0: शौर्य को वर्णित किया है। हिरण्य श्रृंगो यो अस्य पादा मनोजवा इवर इंद्र आसीत देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अरवंतम प्रथमो अध्यतिष्ठत। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्र देव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगवान हैं। देवताओं ने ही इसके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया। ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सम शूरणासो दिव्यासो अत्याह हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिशुर दिव्यमज्ममश्वाः। जब पुष्ट जंघाओं और वक्ष वाले मध्य भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। तव शरीरम पतईष्ण वर्वन तव चित्तम वात इव ध्रजीमान तव श्रृंगाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जरभुराणा चरन्ति। हे चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्व गमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियां वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। उपप्रागाच्छसनम वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः अजह पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात कवयो यंतिरेभाः। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व ऊपर की ओर देवमार्ग को जाता है। अज आगे चलता है, नाभि उसका अनुगमन करता है, पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं। उपप्रागात परमं यत् सद्यस्थमर्वा अच्छा पितरं मातरं च अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुसे वार्याणि। शक्तिशाली चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्माननीय माता पिता से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उत्पन्न करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे वैदिक सूक्तों पर आधारित हमारा कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। अज्ञात का भय हमें अपने लिए सबसे जरूरी चीजें करने से रोकता है, जबकि सच्चाई ये है कि हम जो करने से डरते हैं वही वो चीज होती है जिसे करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमें स्वयं से ये पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और फिर परिणामों को स्वीकार कर उसे कर गुजरना चाहिए।

परफेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जोड़ लें। परफेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति में आना जब हटाने की कुछ गुंजाइश ही ना रहे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें गैर ज़रूरी होती है, उसमें ही व्यस्त रहना एक तरह का आलस है। बहुत सारी चीज़ों से घिरे रहना कुछ नहीं करने जितना ही अनप्रोडक्टिव होता है।

उचित समय का रास्ता ना देखें। समय कभी भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा। परिस्थितियां अक्सर प्रतिकूल रहेंगी। किसी दिन कुछ अच्छा होगा, ये सोचना एक भ्रम है और ये आपको नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से आप अपने सपने कभी नहीं पूरे कर सकेंगे। आप अपने लिए जितना अधिक कंफर्ट तलाश करेंगे, उतना ही अपने लक्ष्य को अर्जित करने से पीछे हटेंगे।

हम चिंता, तनाव और व्यर्थ के विचारों से भरे होते हैं। हम उन चीजों से घबरा जाते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते और कभी कभी तुरंत ही उसके आदर्श समाधान ढूंढना चाहते हैं, जिससे हम और तनावग्रस्त हो जाते हैं। इन सब का एक ही समाधान है, सीधे और तेज सोचें। याद रखें, आप क्या, कैसे और किस प्रकार सोचते हैं, ये तय करने की क्षमता सिर्फ आप में ही है।

जीवन के हर पहलू से शिकायत करने वाले व्यक्ति को कभी शांति महसूस नहीं हो सकती। शिकायत करने वाला ना सो सकता है ना खुश रह सकता है, लेकिन अगर वो किसी तरह से ये देखने की खूबसूरत आदत डाल ले कि जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है और उसके प्रति आभार कैसे महसूस किया जा सकता है, तो उसे शांति मिलने लगेगी।

कोई भी विषम परिस्थिति हो उससे घबरा कर अपने पैर पीछे नहीं खींचे। हौसला रख, हमेशा आगे बढ़े। याद रखे, पैर पीछे खींचने वाले जीत के अवसर भी खो देते हैं। परिस्थितियों से घबरा कर हम ऐसे समय पर पीछे हटते हैं जब हम जीत के लगभग करीब होते हैं। स्वयं पर विश्वास रखकर दुनिया का बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है।

किसी से मदद मिलने का इंतजार ना करें, आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं का हल खुद करें। किसी से मदद मिलने के इंतजार में समय हाथ से निकल सकता है, अवसर हमारे हाथ से निकल सकता है और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे छूट सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: कालीकट के अवांछित अतिथि। क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की तथाकथित खोज वास्तव में महान विजय के बजाय गहरे भ्रम और कूटनीतिक शर्मिंदगी की कहानी थी। मई 1498 में लिस्बन से 316 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वास्को डी गामा ने मालाबार तट पर अपना लंगर डाला। हालांकि पश्चिम के इतिहास में इसे एक महान उपलब्धि माना जाता है, लेकिन पश्चिम और पूर्व की इस पहली मुलाकात की हकीकत तार्किक रूप से बेतुकी थी। पुर्तगाली दल हिंद महासागर के धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह अनजान था। यात्रा के इतिहासकार अल्वारो वेल्हो ने दर्ज किया कि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कालीकट शहर ईसाइयों द्वारा बसा हुआ था। पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को, चर्च, स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। वे अपनी शुरुआती रिपोर्टों में हिंदुओं या बौद्धों का उल्लेख तक करना भूल गए। गलतियों का ये सिलसिला तब और बढ़ गया जब गामा ने अपने पहले दूत के रूप में जोआओ नुनेस नामक एक सजायाफ्ता अपराधी को तट पर भेजा। नुनेस का सामना किसी आदिम स्थानीय व्यक्ति से नहीं बल्कि ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो कॉलिस्टिलियन और जेनोइस भाषाएं बोल सकते थे। उन्होंने पुर्तगाली दूत से जो पहला सवाल पूछा वो इतिहास में शाही अहंकार पर सबसे प्रसिद्ध प्रहार बना हुआ है। शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जब गामा कालीकट के सामुद्री राजा जामोरिन से मिलने पहुंचे तो उनकी बेरुखी और बढ़ गई। पुर्तगाली अपने साथ उपहारों के धारीदार कपड़े, टोपियां, मूंगे की मालाएं, हाथ धोने के बर्तन, तेल और शहद लाए थे। ये उपहार इतने मामूली थे कि स्थानीय अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने गामा को बताया कि मक्का का सबसे गरीब व्यापारी भी इससे कहीं अधिक प्रभावशाली उपहार पेश करता है। राजा के अधिकारियों ने तिरस्कार के साथ कहा कि पुर्तगाल के राजा के पास इतने अमीर शासक को देने के लिए कुछ नहीं है। अंततः गामा को एक शक्तिशाली दूत के बजाय भ्रमित यात्री के रूप में देखा गया। पुर्तगालियों को अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखा गया। खुद गामा ने हमले के डर से अपनी यात्रा के दौरान जमीन पर पैर रखने से मना कर दिया। आपसी अविश्वास इतना गहरा था कि कोई भी स्थिर व्यावसायिक संधि नहीं हो सकी। अगस्त 1498 में जब बेड़ा रवाना हुआ तो वे समुद्र के स्वामी के रूप में नहीं बल्कि अवांछित घुसपैठियों के रूप में निकले। इस पहले संपर्क ने उस विरोधाभास को उजागर किया जिसने शुरुआती पुर्तगाली एशिया को परिभाषित किया। उन्होंने ऐसी दुनिया को खोजा था जो कभी खोई ही नहीं थी बल्कि उनकी आमद के प्रति उदासीन थी और उनके शहद और बर्तनों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी।
0: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भाई महाराज सिंह के शहादत दिवस पर उनके जीवन पर केंद्रित है।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास बहुत सी जागीरें हैं जिन्हें आप अंग्रेजों को सौंपकर बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों की सारी शर्तें मानने के बाद भी आप अपनी जागीरें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप विजेताओं की दया पर होंगे और वो जो टुकड़े आपको देंगे आपको उसे स्वीकार करना होगा। बेहतर होगा कि आप लड़ें और शहीद हो जाएं, बजाय इसके कि आप गुलामों की तरह दयनीय जीवन जिएं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजों के सामने शेर सिंह अटारीवाला के समर्पण के बाद सिख सैन्य और राजनैतिक शक्ति को ये संदेश देने वाले महान सिख संत योद्धा थे भाई महाराज सिंह। भाई महाराज सिंह का जन्म 18वीं शताब्दी में लुधियाना के पास स्थित रबोन ऊंची गांव में हुआ था। उनका मूल नाम निहाल सिंह था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म और सेवा की ओर था। युवावस्था में उन्होंने नौरंगाबाद डेरे में काम किया। डेरे में काम करते हुए उनके भीतर के आध्यात्मिक भाव और अधिक समृद्ध हुए और यहीं से देश की राजनैतिक स्थिति को भी वो समझने लगे। डेरे में लंगर तैयार करने की जिम्मेदारी उनकी थी। अत्यंत सेवा भाव से वो इस कार्य को किया करते थे। जो भी वहां आता उन सभी को वो प्रेम और विनम्रता से महाराज जी कहकर संबोधित करते थे। धीरे धीरे लोगों ने ही उन्हें महाराज सिंह कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया। इस तरह वो भाई महाराज सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये वो समय था जब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज के कारण पूरा पंजाब एकजुट था और अंग्रेज उनके साम्राज्य के आसपास भी फटक नहीं पाते थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का अचानक निधन हुआ और अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल आरंभ हो गई और उधर डोंगरा समाज के लोग भी कुटिल नीति अपनाने लगे। ऐसे समय में भाई महाराज सिंह ने सिखों को संगठित करना आरंभ किया। नाबालिग दिलीप सिंह के गद्दी पर बैठने के कारण सारा राजकाज हीरा सिंह संभाल रहे थे। डेरे में हो रही गतिविधियों को देखते हुए हीरा सिंह ने डेरे पर फौज से हमला करवा दिया। इस हमले में बाबा वीर सिंह शहीद हो गए और डेरे की बागडोर भाई महाराज सिंह को सौंप दी गई। वो लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को लामबंद करते रहे। अंग्रेजों की मंशा से वो सभी को अवगत कराते रहे। सन 1846 तक वो डेरे से ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे।

भाई महाराज सिंह अब नौरंगाबाद छोड़कर अमृतसर आ गए और लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करने लगे। उनकी पहली योजना थी कि सिख साम्राज्य के लाहौर दरबार के हेनरी लॉरेंस तथा कुछ और ब्रिटिश समर्थक सदस्यों को समाप्त किया जाए। ये प्रयास सन 1847 में किया गया, जिसे प्रेमा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 21 अप्रैल सन 1847 को इस घटना को अंजाम देना था, लेकिन अंग्रेजों को पहले ही इसकी सूचना मिल गई और पूरे पंजाब में दमन चक्र चला। लोगों की गिरफ्तारी आरंभ हुई, उनकी जायदाद जब्त करने के आदेश जारी किए गए। इसी समय भाई महाराज सिंह अंग्रेजों की नजर में आए। अंग्रेज गिरफ्तार किए गए लोगों से उनके विषय में पूछताछ करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। इन हालात में भाई महाराज सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। भाई महाराज सिंह की चर्चा अब हर जुबान पर थी। इस तरह पंजाब के लोगों के बीच वो अत्यंत लोकप्रिय हो गए। इनाम की घोषणा के बाद भी भाई महाराज सिंह रुके नहीं। उन्हें मुल्तान के दीवान मूलराज चोपड़ा द्वारा विद्रोह आरंभ करने की सूचना मिली, तो उन्होंने भी अपनी विद्रोही गतिविधियां बढ़ा दी। हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। 400 घुड़सवारों की सेना लेकर वो मुल्तान के लिए रवाना हो गए। भाई महाराज सिंह के समर्थन से मूलराज की बगावत अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गई। विद्रोहियों के हौसले बुलंद थे। अंग्रेज भाई महाराज सिंह को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद उभरे और भाई महाराज सिंह के लौट आने के बाद मुल्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जून 1848 में भाई महाराज सिंह चतर सिंह अटारीवाला से मिले तथा अपनी ब्रिटिश विरोधी योजना के लिए उनसे सहायता मांगी। चतर सिंह पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह के शासनकाल में सिख साम्राज्य की सेना में एक सैन्य कमांडर थे। भाई महाराज सिंह अब अटारी वाले सरदारों के साथ थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया।

भाई महाराज सिंह ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1848 में उन्होंने शेर सिंह अटारीवाला के साथ रामनगर की लड़ाई में भाग लिया। युद्ध में वो स्वयं एक काले घोड़े पर सवार हुए और सेना में जोश भर दिया। सेना में उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने की भावना भर दी। चेलियांवाला और गुजरात की लड़ाई में भी अपने काले घोड़े पर बैठकर उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। चेलियांवाला में अंग्रेजों की हार हो गई। गुजरात की लड़ाई इस बगावत की अंतिम लड़ाई थी। सीमित साधनों की वजह से इसमें विद्रोहियों की हार हुई, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने माना कि ये लड़ाइयां सीधे सिखों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई थीं और इसका उद्देश्य केवल पंजाब नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों के प्रभाव को समाप्त करना था। गुजरात की लड़ाई के बाद भाई महाराज सिंह रावलपिंडी चले गए। रावलपिंडी में शेर सिंह अटारीवाला के समर्पण के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। सिखों को जगाते हुए उन्होंने आत्म बलिदान का संदेश दिया। सन 1849 में सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इन परिस्थितियों में भाई महाराज सिंह भिम्बेर अखनूर होते हुए देवबटाला चले गए। उन्होंने यहां फिर से संघर्ष शुरू किया। उन्होंने चंबी के पास रामनगर के किले पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। डोंगरों ने हमला किया तो वो जस्सोवाला आ गए। उन्होंने महाराजा दिलीप सिंह को भी अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त करने की योजना बनाई, लेकिन ये सूचना भी अंग्रेजों तक पहुंच गई और कई सरदार पकड़े गए। लेकिन भाई महाराज सिंह रुके नहीं, उन्होंने होशियारपुर और जलंधर की छावनियों पर हमले की योजना बनाई। लेकिन किसी भेदिये ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि वो आदमपुर और शाम चौरासी के बीच खेतों में छुपे हुए हैं। 28 दिसंबर सन 1849 को आदमपुर में अपने 21 साथियों के साथ वो गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें जलंधर जेल में रखा गया। जेल ले जाते समय रास्ते में हर सिख ने बड़े सम्मान के साथ सर झुकाकर उनका अभिनंदन किया। लोगों का ऐसा समर्थन उन्हें प्राप्त था कि परेशान अंग्रेजों ने उन्हें जलंधर से इलाहाबाद और फिर कलकत्ता जेल में रखा और कुछ महीनों बाद वो सिंगापुर जेल भेज दिए गए। वो भाग न जाएं इसलिए उन्हें जेल की ऊपरी मंजिल में रखा गया। खिड़कियां हमेशा बंद रखी जाती थीं और दिन रात जंजीरों से उन्हें बांध कर रखा जाता था। जेल की कठिनाई ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। तबीयत बिगड़ने लगी और 5 जुलाई 1856 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के लिए पल पल जीने वाले भाई महाराज सिंह अपनी मातृभूमि को याद करते हुए ही इस संसार से विदा हो गए। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी भाई महाराज सिंह के शहादत दिवस पर उनके जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है नशे का साथ जिंदगी का नाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथ होंगे उनके साथी बाल कलाकार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है। लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है। आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
4: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
4: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता, जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
4: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
4: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
4: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
4: जी,
1: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
4: जी,
1: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
4: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
1: जी,
4: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
4: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें। ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
4: जी,
1: यही कहा था आपसे,
4: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं। नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
4: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
4: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर, कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
4: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
4: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
4: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
4: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर 2-4 दिन बाद जब मैं भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि 2-4 दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
4: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
4: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
5: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
5: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीजें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है। तो इतना छोटे बच्चे के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि ये और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
6: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं यकीन कीजिए, आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी,
5: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा, आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
6: जी।
5: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
6: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे, ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना? क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना? एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
4: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते हैं तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
6: में तब्दील हो गई,
4: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदि होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीजों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि खत्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
6: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
4: जी,
6: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
4: जी,
6: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है, है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
4: जी,
6: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
4: जी, बिल्कुल
6: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
4: जी,
6: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटे तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
5: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई बहुत, समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
6: जाके बैठ जाते हो,
5: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
6: कोई तो सुने, पहली बात
5: कोई तो सुने, बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास से देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है, एक चीज बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
6: दिख ना जाए।
5: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पे जाना शुरू हो गया। जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
6: मेरा पैसा,
5: मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th में थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
6: हद में रहो,
5: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
6: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदी हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बाल सभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपने हद में रहो तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं, आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल
6: आ सकता है।
4: जी जी।
6: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय था नशे का साथ जिंदगी का नाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकारों ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है साइबर क्राइम, और जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ शिवेंद्र कुंभकार। इनसे बातचीत करेंगी डॉक्टर रानी रायकवार।
7: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं, तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
1: आपने मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: जी सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
1: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
0: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
1: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का नंबर आ गया।
0: बिल्कुल।
1: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं, मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा, तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा, जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
0: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
1: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हो उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं, भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स, उनका उपयोग हो।
0: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो बहुत सारों को डाला, कोई ना एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, गिबली ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी AI में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने AI सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी AI इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो AI की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो AI अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसर्न से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
0: अच्छा
1: पूरा डेटा आपने AI को दे दिया।
0: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे, आपका तो उसने अभी बना के दे दिया AI वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
1: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल, तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
1: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा। वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने इसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया। उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है। कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा, वो रैंसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
0: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
1: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो, आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा।
0: ठीक है,
1: फिर उस आईडी की पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
0: ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं।
1: नहीं, हम
0: होते
1: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं कहेंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे। स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो। जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे, जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना। हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। वो क्लोज वालों के लिए था लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
0: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
1: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसके किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं, जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे? वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं ब्लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
0: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
1: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता है।
0: अच्छा।
1: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा।
0: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
1: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
0: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
1: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
0: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
1: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
0: ठीक है,
1: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
0: कुछ नहीं, बस
1: नॉर्मली रहना चाहिए, कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
0: ठीक है,
1: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
0: ठीक,
1: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
0: आप ही थे कि नहीं थे।
1: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे तो आप तुरंत वहां पे लॉग

0: इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता है,
0: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज्यादातर केसेस जो डिजिटल अरेस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बाकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
1: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के, तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
0: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है। हाँ, और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है।
1: हाँ, हाँ,
0: तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है।
1: हाँ,
0: तो उसके चक्कर में
1: ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, ऐसे में तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बंद।
1: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, और तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब तो अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपको, नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं, ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
0: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
1: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
0: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया,
1: तुरंत
0: पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए, नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
1: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
0: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आए पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
1: जी जी जी,
0: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया, मेरे को पैसे सेंड कर दो
1: जी।
0: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को फोन लगा के बोल दो, आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
1: तो फिर बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें, और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
0: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर लोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूंगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे अब कंट्रोल आया है।
1: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र
0: पे हो गया है,
1: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
0: नेट मिल गया,
1: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
0: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
1: ठीक है,
0: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं। मैंने जो कि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है आप इसको यूज करो, उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को जो भी आपकी क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो। वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी। जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था, सिर्फ मल सा इतना मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें। तो जो दूसरा वाला था ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने एक हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो। अब क्योंकि मैं हूँ मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, एआई से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें।
0: मैम एआई का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है एक तो एआई वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें एक्स वाई जेड की जरूरत है, कम से कम हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो। दूसरा है डीप फेक। डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर, वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं। वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर ओटीपी ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया। लेकिन एआई से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज टू स्टेप वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओटीपी या मेल यहाँ पे भी आएगा वहां पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन एआई खुद एक मशीन है और जो आपके पास ओटीपी भेज रहा है वो भी एक मशीन है। बहुत कहते हैं कि एआई में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन एआई एक मशीन है। बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
1: जी,
0: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि एआई जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते, कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल ओटीपी जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है। और वायरस और मेलवेयर के चक्कर में जो कि आपके फोन के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो तो उसके पास पहुंच ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस वो उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया।
1: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
0: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है।
1: अच्छा
0: पहले भले ही फ्री रेन थी, अब वो फ्री रेन नहीं बची है
1: जी।
0: अब हर सरकार इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है।
1: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़ लें आपके पर
0: कभी ना कभी तो फंसोगे, डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो आपका हो मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है।
1: बिल्कुल,
0: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
1: जी,
0: पॉजिटिव में करेगा तो वो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल। हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है।
1: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं उसको संभाल कर रखते हैं उतनी ही सतर्कता उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है, वास्तविक बने रहिए। कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें, ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें।
0: मैम मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं जो भी हैं, कभी भी अपनी ओटीपी या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, सीवीवी हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे ओटीपी मांगे तो उसको ओटीपी कभी ना दीजा। सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है ओटीपी का। आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है। अगर आपसे कोई मांगता है वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आपसे ओटीपी मांगेगा ही नहीं। सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर कोई बाई चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी आईडी वगैरह ले लीजिए, फिर भी ओटीपी ना दीजिए। आईडी की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन ओटीपी ना दो
1: जी।
0: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये नो मतलब नो।
1: बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में, कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रेखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु, जिसके अंतर्गत विषय विशेषज्ञ शिवेंद्र कुंभकार ने जानकारी दी साइबर क्राइम विषय पर। इनसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर रानी रायकवार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
3: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हम करगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का द्वितीय भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। हमारा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं हमारी भारतीय सेना से जुड़े हर उस पहलू को जिसे हम आम नागरिकों को जानना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, ताकि गर्व कर सकें हम अपनी भारतीय सेना पर, जिसके कारण आज हमारा राष्ट्र चारों दिशाओं से सुरक्षित है, महफूज है। श्रोताओं, राष्ट्र की संप्रभुता, सम्मान और सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेना के वीर सेनानियों के बलिदान और पराक्रम की गाथाओं से देश का इतिहास लिखा गया है और वर्तमान में भी, यानी आज जब हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये हम कभी ना भूलें कि सरहद पर 24 घंटे हमारी इन सांसों की निरंतरता के लिए कोई सैनिक चौकन्ना है, तैनात है। भारतीय सेना के इन्हीं वीर चौकन्ने और मुस्तैद सिपाहियों की एक गौरव गाथा, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं या जिसे कारगिल युद्ध के रूप में पहचानते हैं, इसकी चर्चा कार्यक्रम में हम इन दिनों कर रहे हैं। श्रोताओं, कारगिल की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। ऊंचाई पर दुश्मन का बैठा होना, हमारी हर गतिविधि पर उसकी नजर होना, दुश्मन की संख्या क्या है, उनके पास हथियार किस तरह के हैं और कितने हैं, इसका सही अनुमान न लगा पाना, माइनस से भी कई डिग्री नीचे का तापमान, ऑक्सीजन की कमी और तीखी चढ़ाई पर बिना आड़ के दुश्मन की नजरों से बचते हुए रातों में इंच दर इंच आगे बढ़ना, ये सारी परिस्थितियां बेहद ही चुनौतीपूर्ण थी। फिर भी हमारे जाबाज सेना के वीरों ने बड़ी ही शौर्य और पराक्रम से कारगिल की उन चोटियों को वापस लिया और उन पर अपना तिरंगा फहराया। तोलोलिंग की लड़ाई, जिसका कि जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, उस पर फतह बेहद ही दुष्कर थी, लेकिन तोलोलिंग को वापस पाने के बाद इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट आया। आइए एक बार हम रुक करते हैं फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की ओर, जो स्टूडियो में एक बार फिर हमारे बीच हाजिर हैं कारगिल की गौरव गाथा को हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं।
2: जय हिंद सर।
3: पूर्वा जी
2: जी,
3: आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में
2: जी
3: जिस तरह से आपने वो बताया है
2: जी,
3: बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी
2: जी जी जी,
3: टेम्परेचर माइनस में, बिल्कुल सीधी चोटियां जो हैं, डोमिनेटिंग हाइट्स पे दुश्मन का होना
2: जी,
3: और उनका जो हमारी मूवमेंट में लगातार इंटरफेरेंस करना, एक तरह से मतलब बहुत ही दुष्कर ऑपरेशन था ये, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसमें जो सफलता मिली है वो सच में हमारे जांबाज बहादुर सिपाहियों का जोश था
2: जी, बिल्कुल सर।
3: और उनके अंदर एक जो अपने देश के लिए प्रेम था, देश प्रेम था
2: जी,
3: मैं कहूँ तो एक तरह से देखा जाए तो वो सर पे कफन बांध के निकले थे
2: जी, बिल्कुल सर।
3: जिस तरह से उन्होंने ये किया है
2: जी जी,
3: हमने जैसे पिछली बार जिक्र किया था तोलोलिंग का
2: जी,
3: निसंदेह तोलोलिंग को कैप्चर करना बहुत बड़ी जीत थी
2: जी, बिल्कुल सर।
3: अभी जो है बहुत कुछ बाकी था,
2: मेरी जानकारी है सर, ये तो पहला स्टेप था।
3: एग्जैक्टली, ये तो पहली हाइट थी जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हाइट थी, हमने जो है कैप्चर करी। टू राजीव जैसे हमने देखा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था
2: जी।
3: अब आगे जो है और भी जो लोकेशन थी जिसमें कि एनिमी बैठे हुए थे
2: जी,
3: पाकिस्तानी बैठे हुए थे और इंटरफेयर कर रहे थे, हमारे ऑपरेशंस में भी इंटरफेयर कर रहे थे
2: जी,
3: तो जैसे तोलोलिंग के ठीक पीछे एक हाइट थी जो नॉर्थ में
2: जी।
3: उसको हम 0.5140 बोलते हैं।
2: आपने जो नंबर बोला तो ये नंबर जो है उस चोटी की ऊंचाई को बताता है।
3: एग्जैक्टली ये उस चोटी की ऊंचाई को बताता है, उसके हिसाब से उसको हम नाम देते
2: जी, उसी नाम से पुकारने
3: जी, उसी नाम से पुकारते हैं
2: जी।
3: तो ये जो हाइट थी मतलब तोलोलिंग से भी ऊपर
2: ऊपर है
3: एंड अगेन ये भी काफी बड़ा फीचर था। दुश्मन ने जो है इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से अगेन वो डोमिनेटिंग हाइट पे था। तो तोलोलिंग को अगर हमको बरकरार रखना है तो इसको कैप्चर करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और आप ये समझ सकते हैं कि इतना मैसिव फीचर था कि उसके लिए एक बटालियन नहीं तीन बटालियन है, पूरी ब्रिगेड का लेवल का एक अटैक किया गया
2: जी, जी।
3: उस फीचर पे जो है तीनों तरफ से तीन दिशाओं से जो एक साथ अटैक किया और उस अटैक में मतलब जो है पूरा जो डिवीजन था उसकी जितनी आर्टिलरी होती है मतलब और मोर्टर फायर होता है उसके सपोर्ट था। इंडियन एयरफोर्स ने जो है उससे पहले जो है टारगेट्स के ऊपर जो है बम्बार्डिंग करी थी और पूरा जो है फोर्स लगा था
2: जी।
3: और उसका कारण ये है कि ये इतने मैसिव फीचर्स होते हैं और उसमें आपको स्टीप क्लाइंब करके ऊपर जाना है तो ये जरूरी है कि उससे पहले हमें ये फायर सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जो मैसिव फीचर था इसके लिए बहुत बहादुरी से हमारे सिपाही लड़े, इंच इंच करके आगे बढ़े, तीनों तरफ से जो है डायरेक्शन से अटैक आया। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे जो 13 जैकरिफ बटालियन थी उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे, ये नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं,
2: बेहद मशहूर है
3: जी। ही वॉज एक्सेप्शनली ब्रेव ऑफिसर जो फ्रंट से लीड करके इनिशिएटिव लेके हमेशा आगे जाते थे। तो ही एक्चुअली शोड एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन दिस अटैक बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उन्होंने जो है जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया गया था उस पे कैप्चर करते समय दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे एंड जितने वहां सोल्जर्स थे उन्होंने काफी डेयर डेविल अटैक में काफी सोल्जर्स को हैंड टू हैंड फाइट मतलब जो है खत्म किया था और उस पोजीशन को कैप्चर किया था। तो कहते हैं कि कैप्चरिंग के बाद जब अपने उसी हिसाब से वो बात कर रहे थे तो बड़ा
2: मशहूर जुमला है सर वो दिल मांगे
3: या बिल्कुल सही बोला आपने। आप सोचिए एक यंग कैप्टन उसका उनमें कितना जोश था
2: सर, वो तो शेरशाह कहलाते थे।
3: वो शेरशाह कहलाते थे, सच में वो शेरशाह थे
2: जी।
3: और इस जुमले ने और उसके बाद जब इंटरव्यू में भी उन्होंने यही एक्सप्रेस किया था कि मैं जब तक इनको निकाल नहीं दूंगा मतलब जो है मुझे मेरा दिल तो हमेशा मांगता रहेगा कि हर मेरे को ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव लेना है। ये बिकेम ए हाउस होल्ड नेम अक्रॉस द कंट्री,
2: बच्चा बच्चा जानता है सर
3: जी। उसके बाद ये और जितने और सोल्जर्स थे बटालियंस थी उन सब ने मिलके जो है फाइनली ये जो 0.5140 पे आखिरकार 20 जून को कैप्चर किया, कब्जा किया जो है। ये जब कब्जा होता है उसमें क्या होता है आप ये देखिए कि जो मैसिव फीचर होते हैं जैसे वो एक चोटी के ऊपर ही दुश्मन नहीं होता है, वो उसके आसपास छोटे छोटे
2: बिखरे
3: पोस्ट बनाई हुई होती हैं। तो एक एक करके जो है इनको कैप्चर कराया जाता है, कैप्चर करके आगे बढ़ा जाता है और हर स्टेप के ऊपर आपको एक नई लड़ाई लड़नी होती है। हर स्टेप के ऊपर नया चैलेंज होता है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊपर से फिर फायर आ रहा है, उस बीच में रसद भी आ रही है, एमिनेशन भी आ रहा है पीछे से, आपके साथियों कैजुअल्टी हो रहे हैं ठीक है, उनको आप इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके साथ जो लड़ रहा होता है सडनली यू फाइंड कि ही इज डेड। इट इज अ वेरी मतलब मेजर इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी एंड यू हैव टू रियली कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट टाइम कि अभी 2 मिनट पहले था और अभी नहीं रहा
2: नहीं।
3: और उससे भी ज्यादा दुख होता है जबकि उसको गोली लगी हुई है और आपको उसको इवैक्यूएट भी करना है और सामने दुश्मन से भी लड़ना
2: है।
3: और ये इस युद्ध में सबसे ज्यादा था उसका कारण जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दुश्मन को हम दिख रहे थे वो हमसे ऊपर बैठा,
2: हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे,
3: हम उन्हें इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे थे जितना कि वो हमको देख रहा था एंड उसको हाइट डोमिनेटिंग हाइट पे होने का एडवांटेज था। दैट्स व्हाई ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं एंड हम उन हर सोल्जर की कुर्बानी के लिए उसके सामने नतमस्तक होते हैं।
2: बिल्कुल सर, नमन है हम सभी
3: जी, नमन है जिन्होंने सर में सच में कफन बांध के जो है लड़ाई लड़ी
2: जी बिल्कुल।
3: और उनके दिल में क्या होता होगा कि में कितना देश प्रेम था उन्होंने कि हमारे यहाँ पे आपने घुसपैठ किया है हम आपको नहीं रहने देंगे और उसको निकाला।
2: बिल्कुल सर,
3: तो मैं तो एक एक सोल्जर जो है जो भी रहे उनको सबको जो है सैल्यूट है हमारी तरफ से। इसी तरह से अभी हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अदर फीचर जो बहुत फेमस हुआ था आपको याद होगा टाइगर हिल
2: जी।
3: अब टाइगर हिल जो है इट्स अगेन इट्स अ मैसिव फीचर
2: जी,
3: जो कि उसके आसपास की जितनी पहाड़ियां अगर आप फोटो देखेंगे आपको दिखेगा बिल्कुल अलग से नजर आता है, बिल्कुल
2: सबसे ऊंची चोटी
3: बिल्कुल अलग से दिखती है और बहुत बड़ी है, मतलब 2.2 किलोमीटर टिप से लेके 1 किलोमीटर में फैली हुई ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ टू साउथ में। और ये जो है मतलब NH1 alpha जो हमारा जाता है तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर जो है नॉर्थ में थी, और वो मतलब जो चोटी है वो पूरा का पूरा NH1 alpha जो है उस समय जो इसको डोमिनेट करती, जो श्रीनगर लिए रोड है उसको डोमिनेट कर रही थी
2: जी। और सर मैंने सुना कि दुश्मन के पास ऐसे हथियार थे जो 7-8 किलोमीटर दूर हमारे नेशनल हाईवे पर वो बम्बार्डिंग कर सकते थे
3: जी। उसमें क्या होता है, यहाँ पे आर्टिलरी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से जो है पीछे अपनी जो आर्टी गन्स होती है उसका फायर लेकर आते हैं
2: जी।
3: तो ऑब्जर्वेशन क्योंकि इनको क्लियर था तो इस कारण से आर्टी फायर लाने में उनको बहुत मदद मिल रही थी, जो कि हमारी पूरी व्हीकल मूवमेंट थी उसमें इंटरफेरेंस होता था क्योंकि लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही होती थी तो मूवमेंट नहीं हो पाता था। और इस फीचर पे जो है कहते हैं पाकिस्तान आर्मी की नदन लाइट इन्फेंट्री थी बटालियन थी उसकी पूरी कंपनी की स्ट्रेंथ तैनात थी। अब अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि टॉप पे सब बैठे हों मिलजुल के, वो अलग अलग जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं जहां से दुश्मन के आने का मतलब खतरा है, मतलब अगर हम डिफेंस के हिसाब से देखें तो वो हर जगह पे मतलब छोटी छोटी पोस्ट बना के बैठे होते हैं, फैले होते हैं
2: जी।
3: तो आपको जब वहां तक पहुंचना है उसको कैप्चर करना है तो आपको एक नहीं अनेकों लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं
2: जी।
3: हर तरफ से मतलब जो है एक आप पोस्ट कैप्चर करते हैं, फिर उसको कैप्चर करने के बाद उसको फुटहोल्ड बना के दूसरी पोस्ट आगे बढ़ के कैप्चर करते हैं। तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे ऑपरेशन होते हैं, माउंटेन्स में समय बहुत लगता है। ये जो है अगेन इट्स अ इट वाज अ मैसिव फीचर। और तब तक जो है टीवी ने भी इसमें मतलब न्यूज सीरीज में मतलब तकरीबन सब लोगों ने देखा था,
2: हाँ
3: तो एक बड़ा डिस्कशन था कि इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या ये कैप्चर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक ये भी था कि ये तो भाई इतना मतलब मैसिव फीचर है कि इस पे बहुत मुश्किल है, असंभव सा काम है कि इसको जो है आप मतलब कैसे कर पाएंगे। बट फाइनली तो हमने कैप्चर किया और इसके लिए जो बटालियन थी 18 ग्रेनेडियर्स और 86 जो थी उनके साथ आर्टिलरी थी, इंजीनियर्स थे, एक हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, तो वहां से जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं वो लोग माउंटेन्स में
2: पहाड़ों
3: पर लड़ाई करने के लिए, तो उसके भी जो है स्पेशल टीम्स आई हुई थी इसके लिए। जब अटैक 3 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर से शुरू किया था उससे पहले जो है मैसिव आर्टिलरी बम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर, IAF जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने स्ट्राइक्स करी थी, मिसाइल अटैक्स हुए थे, क्योंकि नहीं तो आप उस ऑब्जेक्टिव तक तो पहुंचना इन्फेंट्री के लिए तो बहुत मुश्किल
2: है, भटकाने के लिए भी बहुत जरूरी था जी,
3: उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है
2: ना,
3: उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है। एक तो वो हमारे इलाके में घुसा हुआ है, मतलब हर तरह से हमारा हर, क्योंकि हम अपना इलाका हमारे घर में घुसा है तो हम उनको निकालने के लिए कुछ भी कर सकते,
2: किसी भी कीमत पर जा सकते,
3: बिल्कुल। इसमें भी अगेन जो है मल्टी डायरेक्शनल अटैक लॉन्च करें जो है, और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया वही सेम मतलब जो है स्टीप क्लाइम्स हैं, बहुत रगेड टेरेन है, इंटेंस फायर आ रहा है दुश्मन का डोमिनेटिंग पोजीशन से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक एक एक एक पोस्ट को क्लियर करते हुए जा रहे थे। एंड अगेन देखिए आप, इट इज नॉट कि ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई है, घंटों लग जाते थे, रात से दिन हो जाता था, दिन होते थे तो मतलब जो है आप एक्सपोज होते थे, दुश्मन आपको देख रहा होता था। जो हमारे जवान हैं उनका मोटिवेशन देखिए कि वो भूखे प्यासे होते थे, ठंड में पड़े होते थे, उसके बावजूद जो है ना तो कभी उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, जहां तक वो आगे बढ़ गए वो फिर पीछे नहीं आए, कहीं पे भी वो पीछे नहीं आए।
2: सर मुझे तो ये सुनने में आया है कि वो अपने साथ अपना राशन ले जाने के बजाय गोलियां ले जाना ज्यादा प्रेफर करते थे, ताकि क्योंकि ऊपर चढ़ाई बहुत मुश्किल है।
3: बिल्कुल, खाना खाने का तो पता नहीं लेकिन गोली होना जरूरी है,
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि अगर लड़ना है तो गोलियां जरूरी है और वही उस समय हमको बचा सकती है जो है। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो फाइनली जो है टीम ग्रेनेडियर्स दे रियली डिड अ वंडरफुल जॉब एंड 4 जुलाई को दे अचीव्ड अ मेजर सक्सेस होल्डिंग दिस, ठीक है, ओके ग्राउंड उन्होंने जो है इसको कैप्चर किया
2: जी।
3: जो है अब ये था कि इसको कैप्चर करने के बाद जो दुश्मन था उन्होंने लगातार काउंटर अटैक किए
2: जी वापस पाने के
3: वापस पाने के लिए। तो इसमें भी जो है मतलब ये बटालियन जो है अपने इनके जो जवान है लड़ते रहे, कंटिन्यूअसली लड़ते रहे उस जगह को छोड़ा नहीं
2: जी,
3: एक बार आया तो नहीं छोड़ा। यहाँ पे अपन जिक्र करते हैं, मतलब ये जो अटैक हुआ था
2: जी जी,
3: इसमें अगर आपको याद होगा उस समय जो ग्रेनेडियर्स थे योगेंद्र सिंह यादव
2: जी सर,
3: है ना
2: जी, नाउ इज ऑनरेरी
3: जी, ऑनरेरी कैप्टन, जिन्होंने की बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाई दिखाया इस अटैक में, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा।
2: जी बिल्कुल सर बिल्कुल।
3: वो क्या था कि जब ये अटैक हो रहा था तो हमारी घातक प्लाटून होती है, घातक प्लाटून मतलब इट्स लाइक ए कमांडो प्लाटून जो बटालियन में होती है, छोटी सी होती है, जिसके की लोग बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं, ट्रेन होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि ये ऐसे दुर्गम इलाकों में उनको डिप्लॉय किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। तो जो योगेंद्र सिंह जी थे वो इस घातक प्लाटून के मेंबर थे, वो इसका हिस्सा थे, तो जिसका काम दिया गया था कि टाइगर हिल टॉप पे आपको जाके कैप्चर करना है, क्योंकि स्टीप क्लाइम था, तो इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा सबसे आगे और जो है रस्सी ले जाके उसको फिक्स भी करूंगा। तो इन्होंने जो है वॉलंटियर करके आगे बढ़े
2: जी।
3: और फिक्स करते हुए रो फिक्स करते रहे क्योंकि बहुत स्टीप था, जिसकी मदद से जो बाकी टीम भी ऊपर चढ़ती गई। तो जैसे ही टॉप पे पहुंचे हैं दुश्मन को भनक लग गई कि भनक लगी तो उन्होंने देखा तो उनको दिखा और उन्होंने बहुत जो है हैवी इंटेंस फायरिंग इनके ऊपर शुरू करी। वो इतनी इंटेंस थी कि जो टीम लीडर थे और साथ में जो दो सोल्जर और थे घातक वही शहीद हो गए। इतना फायर आ रहा था तो उसके कारण जो है मूवमेंट स्टॉल हो गया एक तरह से। तो फिर से जो है योगेंद्र सिंह ने मतलब ही टुक द इनिशिएटिव, धीरे धीरे क्राउल करते हुए आगे गए और जो दुश्मन का जो संगर था उस पर उन्होंने अटैक किया और वहां पे जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स थे तो उन्होंने लगातार उनको फायरिंग करके एंड उनके साथ लड़ते हुए ऑलमोस्ट ही किल्ड एवरी वन ऑफ देम, चार पांच जो थे
2: जी।
3: अब इनके जो एक्शन से क्या हुआ कि वो जो मशीन गन फायर हो रही थी वो शांत
2: वो बंद हो गई,
3: वो बंद हो गई। तो जब वो बंद हुई तो बाकी जो टीम थी उनको मौका मिला
2: जी।
3: मौका मिला तो उन्होंने भी आगे बढ़ के एंड बाकी जो बंकर्स संघर्ष जो थे
2: जी, जी।
3: उसके ऊपर जो है उन्होंने अटैक करा, अटैक किया एंड फाइनली द टीम सक्सीडेड, प्लाटून सक्सीडेड और जो है इन्होंने टाइगर टॉप पे कब्जा किया था
2: जी।
3: अब इसमें जो है योगेंद्र सिंह जी को काफी खुद को भी बुलेट इंजरीज हुई थी,
2: मैंने सुना सब 15 बुलेट्स थी
3: जी उनको, काफी मतलब जो है दानाद में गोलियां लगी थी। लेकिन देखिए फिर भी उनका आप हौसला देखिए
2: जी जी,
3: इतनी बुलेट लगी है ना तो वो पीछे हटे ना उन्होंने इवैक्यूएशन होने का वो किया कुछ भी किया, लेकिन वो लड़ते रहे वहां पे जो है
2: जी।
3: एंड राइटफुली फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी इनिशिएटिव एंड करेज, ठीक है, ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द कंट्री, परमवीर चक्र उनको मिला
2: जी।
3: और ये आप अगर देखें कि हर एक जो सोल्जर था जो गया है 18 ग्रेनेडियर्स के, हर सोल्जर्स ने अपने जो है पूरी बहादुरी और जांबाजी से अपना कार्य किया था। हाँ ये जरूर है कि उसमें कुछ जो हटके इन्होंने किया वो बहुत ही ज्यादा था
2: जी, ये तो बिल्कुल असाधारण काम था,
3: असाधारण काम था।
2: ये हम सोच ही नहीं सकते ना कि एक मनुष्य होकर इतना जज्बा रख लेना, 15 गोलियां खाने के बाद भी
3: जी
2: अपनी बहादुरी पूरी की तरह से देश प्रेम के लिए बिल्कुल उड़ेल के रख देना सर।
3: और इनिशिएटिव देखिए आप कि मैं आगे जाऊंगा,
2: हाँ जी
3: मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के बाद जो है मैं ये कार्य करूंगा
2: जी।
3: तो राइटफुली मतलब एंड ही इज ऑनरेरी कैप्टन जो है और ही डिजर्व्स अ रियल सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस,
2: जो असली कारगिल हीरो हैं सर
3: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर हिल तो इन्होंने लिया जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उसके आसपास भी जो पोस्ट थी अब वो उनसे इंटरफेरेंस हो रहा था, दुश्मन तो वहां से भी फायरिंग कर रहा था
2: जी।
3: तो उनकी जो बाकी पोस्ट थी जहां से कि उनकी रसद भी सप्लाई हो रही थी और जहां से उनका रीइंफोर्समेंट भी आ रहा था
2: जी,
3: उसको रोकना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए जो 86 बटालियन थी साथ में उनको टास्क दिया गया। अब अगेन वहां से उन्होंने जो है अटैक करके जो बाकी जो पोस्ट थी उनको कैप्चर किया। अगेन मैंने तो एक लाइन में बोल दिया है लेकिन सच में यकीन मानिए एक लाइन का एक सेकंड का काम नहीं था,
2: बहुत दुष्कर है,
3: बहुत ही दुष्कर थे जो है इस पे चढ़ना। अगेन मतलब जो है इट्स एक्चुअली नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड डिटरमिनेशन, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन होते हैं वो जो है वहां पे उसी को समझ में आता है एंड उनको काफी कैजुअलिटीज भी हुई इनकी जो है, बट वो अगेन दे वर एबल टू कैप्चर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू देम. उसके बाद दुश्मन ने काफी मेजर काउंटर अटैक्स भी किए रिगेन करने के लिए, लेकिन ये जो सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे सिख के, वो अपनी पोस्ट पे डटे रहे. उन्होंने तो एक इंच भी जमीन वापस नहीं करी. जो ले लिया वो तो फिर हमारा है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी, है ना. तो ये जो मैसिव फीचर था, इसको जो हमने कैप्चर किया था
2: जी,
3: तो इट वाज एक्चुअली सच ए बिग सक्सेस फॉर द आर्म फोर्सेस कि इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन.
2: ठीक है, बिल्कुल सर.
3: इनफैक्ट एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड इट. ठीक है, एंड इट वाज ए मेजर लॉस टू पाकिस्तान. ठीक है, इट वाज ए मेजर ब्लो टू देम. ठीक है, ओके. अच्छा, पाकिस्तान का तो ये हाल था कि वो ये मानने से भी इनकार कर रहा था कि कोई टाइगर हिल नाम की फीचर है या उनकी आर्मी वहां पे है,
2: मौजूद
3: है, जो है. तो 8 जुलाई को हमारा तिरंगा 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पे लहराया, एंड वाज अगेन ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन. एंड ये जो विक्ट्री थी, इससे काफी कुछ जो है हमें सक्सेस मिली. और ड्रास सेक्टर में जो है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया. वो जो मेजर पोर्शन था तोलोलिंग, टाइगर हिल, और उसके बाद ये जो
2: जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे खतरे में था,
3: काफी बड़ा हिस्सा जो है हमने चेक किया.
2: सर, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो द्रास क्षेत्र है, उसके अलावा भी कोई ऐसी जगह थी जहाँ से दुश्मन हमारे यहाँ घुस आए थे और वहाँ भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी?
3: जी हाँ, बिल्कुल. द्रास तो एक सेक्टर था बीच में
2: जी.
3: अगर आप देखें तो उसके वेस्ट में, यानी कि द्रास और जो जिला के पास है के बीच में मशको वैली आती है, वहां पे भी इन्होंने जो है पाकिस्तानियों ने घुसपैठ करी थी.
2: अच्छा.
3: और ये तकरीबन NH1 अल्फा जो रोड है उसका 30 किलोमीटर तक का जो एरिया था
2: जी,
3: उस पे वो डोमिनेट कर रहे थे.
2: अच्छा.
3: और उसमें वहां पे भी उन्होंने कुछ मेजर हाइट्स थी जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था.
2: अच्छा.
3: और अगर हम द्रास के आगे, मतलब सियाचिन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, कारगिल से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए द्रास आता है, द्रास का कारगिल आता है, फिर उसके बाद आगे जो है चोरबाटला बटालिक सेक्टर आता.
2: अच्छा.
3: है तो वहां पे भी घुसपैठ इन्होंने करी थी, और वहां पे भी जो है इन्होंने कुछ हाइट्स वगैरह थी जिन पे कैप्चर किया हुआ था.
2: अच्छा.
3: तो अब एक एक करके जो है, और कई जगह एक साथ जो है, हर जगह जो है इंडियन आर्मी लड़ रही थी और इनको वहां से निकाल रही
2: थी, रही थी,
3: खदेड़ रही थी, पीछे हटा रही थी.
2: अभी
3: क्या हो रहा है कि जब हम अपने एपिसोड्स में जो जिक्र करते हैं
2: जी, जी, जी.
3: हमने कुछ खास जगह के बारे में ही हम जिक्र कर रहे हैं
2: सर.
3: लेकिन और भी जो है काफी जगह है, और काफी सारी बटालियंस भी थी. अभी हमारे सामने तो कुछ ही बटालियंस का नाम आता है जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने हम, आप यकीन मानिए, जितनी हम बात कर रहे हैं उससे कम नहीं तो 3 से 4 गुना ज्यादा फोर्सेस थी सिर्फ इन्फेंट्री की.
2: जी सर, ऐसा बोला जाता है ना कि यदि हम युद्ध लड़ते हैं और हमें जीतना है तो 1:3 का रेशियो होना
3: चाहिए. तो होना ही होता है.
2: पहाड़ी पर हो जाती है ये चीज तो 1:15 तक चले जाते हैं.
3: यू आर राइट, डिपेंड करता है. देखिए ना, अभी हमने जिक्र किया था टाइगर हिल का, तो उसमें जो है एक कंपनी के अगेंस्ट 3 बटालियंस गई थी. काफी आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला.
2: एक प्रश्न और भी मेरे मन में आता है सर, ये हम एपिसोड इसको समाप्त करें इसके पहले, कि तोप का उपयोग इस युद्ध में, कारगिल युद्ध में विशेष रूप से बहुत अधिक हुआ, और मतलब सदुपयोग किया गया उसका तोप का, और चर्चित नाम बोफोर्स का उपयोग, क्या पहली बार हुआ है इस तोप का उपयोग?
3: नहीं, ये तो देखिए बोफोर्स तो हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे. इसमें एक जो बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी थी वो था डायरेक्ट फायरिंग में. से क्या होता है, जब आर्टिलरी फायर होता है, इट इज अ पैराबोलिक जो दूर जाके जो गिरता है. इसमें क्या हुआ था कि हमें जो सामने दिख रहा था बंकर, जो संगर दिख रहे थे, उसमें मतलब आर्टिलरी शेलिंग इस तरह से हुई थी कि ये डायरेक्ट फायर किया था.
2: अच्छा.
3: तो ये एक अलग तरह से उपयोग था. दूसरा, इसमें जो है काफी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था जो फायरिंग में, बहुत सारी गन्स वगैरह का एक साथ इस्तेमाल हुआ था. तो उसका जो इम्पैक्ट था, हमें समझ में आया था कि आर्टिलरी कितना मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकती है. तो वो एक हम लोग को एक लेसन सीखने को मिला था. यू आर राइट, इसके कारण जो है बोफोर्स काफी उसका नाम आया था.
2: हाँ, जी, बहुत चर्चित हुआ था,
3: बहुत चर्चित हुआ था, एंड इट इज अ वेरी गुड गन.
2: सर, सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग बात ये लगती थी कि इन तोपों को वहां तक ले जाना, युद्ध भूमि तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती था।
3: जी वो तो है। दूसरा क्या होता है कि जब आप फायर होता है, एक्टिव फायर होता है, तो उसकी जो लोकेशन होती है गन की, वो इमीडिएटली दुश्मन पता कर लेता
2: हाँ,
3: है।
2: जी, जी।
3: तो उसके लिए क्या होता है कि इमीडिएटली गन्स को मूव करना होता है, क्योंकि काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा आपके ऊपर, दोबारा अटैक होगा। तो उसके लिए ये जो गन्स होती है फोर्स, क्योंकि इनके पास मोबिलिटी है, ये भी एक कारण था कि उसके कारण काफी ये
2: सफल रही है
3: क्योंकि इनके पास अपना जो है कैपेबिलिटी होती है मूवमेंट की होती है, तो फायर करने के बाद
2: एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
3: ओके, दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस गन।
2: तो सर हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम आम इंसान इन सब चीजों को जान सके। ये बहुत बेसिक चीजें, युद्ध जीतना और तिरंगा फहराना तो हमने देखा है टीवी पर और सब, लेकिन इसके पीछे जो एक कहानी है, जो एक गौरव है, जो एक पराक्रम है, उसी को हम उजागर करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम से।
3: बहुत ही अच्छा बोला आपने। जैसे सिर्फ जो लड़ रहे हैं
2: जी,
3: उनके साथ एक बहुत एक इंसान होता है जो पोर्टर्स होते हैं, सिविल पोर्टर्स होते हैं, जो एमिनेशन कैरी करते हैं, राशन कैरी करते हैं, वो वहाँ के लद्दाख के लोकल्स होते हैं,
2: उनका भी उतना ही बड़ा योगदान,
3: उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो अगर एमिनेशन लेके जाना, रसद लेके जाना और कैजुअलिटी इवन इवैक्यूएशन में मदद करना, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो उसी तरह से बाकी जो है इसमें इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स है, कम्युनिकेशंस डेवलप करना है, ऑर्डिनेंस का काम है, एमिनेशन सप्लाई करना है, राशन सप्लाई करना है, तो इट इज अ वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ जॉब।
2: सबका समन्वय है,
3: समन्वय है। तो ईच एंड एवरी वन, मतलब जिन्होंने काम किया इसके लिए, वो सभी तारीफ के काबिल हैं।
2: ऑपरेशन विजय जो है इन्हीं की विजय है।
3: बिल्कुल इनकी विजय है, 100% इनकी विजय है।
2: तो श्रोताओं, ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहाँ हर परिस्थिति, हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन युद्ध का परिणाम दुश्मन के पक्ष में नहीं रहा। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के पराक्रम का परचम एक बार फिर बुलंद किया, जो शुरू हुआ था छल कपट और विश्वासघात की बुनियाद पर, लेकिन खत्म हुआ भारतीय सेना के वीरता, विश्वास और विजय के साथ। ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की जंग नहीं थी, ये जंग थी देश के अभिमान की, स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की। ये जंग थी दुश्मन को उसकी हदें बताने की, हमारी सरहदों की रक्षा की। इस युद्ध की बातें आगे भी जारी रहेंगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। धन्यवाद सर इस कार्यक्रम के लिए।
3: जय हिंद पूर्वा एंड जय हिंद श्रोताओं।
2: जय हिंद सर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मेरे साथ थे लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सेवानिवृत्त, जो हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे थे, और मैं थी आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हमने करगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का द्वितीय भाग सुना। जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद।
4: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे हैं दीपक नेमा और भगवती सक्सेना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप?
2: दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
3: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
2: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
3: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
2: ओके दादाजी।
3: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
3: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
2: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
3: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
2: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
3: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
2: वो तो है दादाजी।
3: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
2: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
2: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
3: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
2: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में।
3: पूछो।
2: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
3: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
2: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
3: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
2: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
3: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
2: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
3: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
2: कैसा सपना दादाजी?
3: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
2: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
2: दादाजी, क्या सन 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
3: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
2: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
2: दादाजी, अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू, अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
3: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
2: हाँ दादू।
3: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है। ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
2: दादू दादू दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
3: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
2: अब समझे। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
3: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
2: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
3: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है। ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
2: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
3: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
2: वो तो है।
3: हाँ बेटा, देखो आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
2: दादू, मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
3: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
2: अच्छा।
3: हाँ।
2: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइलों से खोजती कैसे होगी?
3: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
2: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
3: बिल्कुल वैसा ही।
2: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
3: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
2: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
3: हाँ हाँ,
2: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
3: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तरबंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
2: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
3: हाँ
2: दादू, ये किस तरह की तकनीक है?
3: इसका मतलब है कि बेटा, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
2: दादू, ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
3: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
2: अच्छा,
3: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
2: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है, और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू, समुद्र में क्या होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
2: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
3: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
2: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
3: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
2: अच्छा?
3: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
2: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
2: दादू, ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
3: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
2: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
3: नहीं नहीं बेटा, भारत को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
2: अच्छा?
3: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
2: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
3: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
2: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
3: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
2: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
2: रोबोट? सचमुच?
3: हाँ हाँ, आज BDL अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
2: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था, क्या इसका भी BDL से कोई संबंध है?
3: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। BDL भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा रहा है बेटा।
2: दादू, आजकल AI की भी तो बहुत चर्चा होती है ना, क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
3: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब AI आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। AI की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
2: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
3: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
2: दादू, आपने पहले IDEX का नाम लिया था?
3: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
2: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
3: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने, कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
2: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
3: लाभ ही लाभ है बेटा, विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
2: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
3: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
2: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
3: अच्छा,
2: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है

0: के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
1: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया। याद रखो, हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था, और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
0: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
1: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
0: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
1: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो, या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने, आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
0: ओ दादू, आपका बस चले ना तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
1: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
0: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
1: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
0: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
1: हाँ बेटा।
2: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
1: और दीपक नेमा
2: को दीजिए आज्ञा।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देश के संस्थान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम को स्वर दिया दीपक नेमा और भगवती सक्सेना ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। आज की कड़ी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के जीवन पर केंद्रित है।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इतिहास का नमस्कार
1: और साथ ही तारीख का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रोताओं।
0: तारीख, आज आप किस बलिदानी की कहानी लेकर आई हैं?
1: इतिहास आजाद हिंद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतिहास और तारीख दोनों मिलकर किसी न किसी क्रांतिवीर की कहानी अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। तो आज आप ही बताइए किसकी बारी है।
0: तारीख, आज बारी है ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा, और वो है दुर्गावती यानी दुर्गा भाभी।
1: तो फिर हम अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार न करवाएं तो अच्छा होगा।
0: जी, एक शताब्दी से थोड़ा पहले जब 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के पंडित बांके बिहारी नागर के घर एक सुकुमार कन्या का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बड़ी होकर ये बच्ची भारत में ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। इस बच्ची का नाम दुर्गावती रखा गया। 10 माह में ही इस बच्ची की मां की मृत्यु हो गई। वैराग्य से घिरे पिता ने उसके चाचा चाची के घर सौंप कर संन्यास की राह पकड़ी।
1: 1918 में आगरा निवासी शिवचरण वोहरा के पुत्र भगवती चरण वोहरा के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और वे 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जन जागृति और शिक्षा के महत्व को समझने वाली दुर्गावती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1925 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम शचिंद्र नाथ रखा गया।
0: चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी हुई और देशभक्तों के एक वर्ग ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर देश की आजादी का सपना देखा था। भारत को आजाद कराने की रणनीति में जुटे लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। इसकी पहली कार्यकारिणी सभा 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हुई।
1: इस सभा में बिस्मिल के नेतृत्व में योगेंद्र शुक्ल, योगेश चंद्र चटर्जी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग थे। बाद में अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आजाद भी इस संस्था में शामिल हो गए। काकोरी कांड के बाद यही संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पुनर्जीवित हुई, तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, उनकी बहन सुशीला दीदी और दुर्गावती भी जुड़ गई।
0: मेरठ षड्यंत्र कांड में भगवती चरण वोहरा के नाम पर वारंट निकलने पर वे अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ लाहौर चले गए, जहां वे भारतीय नौजवान सभा में शामिल हुए। 16 नवंबर 1926 को भारतीय नौजवान सभा ने शहीद करतार सिंह की 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया। दुर्गा देवी और उनकी ननद सुशीला देवी ने अपने खून से शहीद करतार सिंह का चित्र बनाया था। यहीं से दोनों क्रांतिकारी महिलाएं दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी के नाम से जानी जाने लगी। इस पार्टी के जरिए दुर्गा भाभी लगभग सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई।
1: दुर्गा भाभी के लिए सबसे यादगार दिन था 17 दिसंबर 1928 का। लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या करने के बाद सुखदेव और भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के घर पर शरण ली। भगत सिंह अंग्रेजों की तरह सूट और हैट पहने थे। दुर्गा भाभी समझ गई कि क्या हुआ है। प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा कलकत्ता गए हुए थे। दुर्गा भाभी ने भी योजना बनाई कि इन्हें भी कलकत्ता लेकर जाया जाए।
0: लाहौर से कलकत्ता जाने की योजना बनी। भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के वेश में थे। उन्होंने ट्रेन में प्रथम श्रेणी की टिकट ली और राजगुरु ने सेवक की वेशभूषा में तृतीय श्रेणी की टिकट ली। जब ये लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही भगत सिंह को खोजते हुए पहुंची थी, लेकिन दुर्गा भाभी की मदद से भगत सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ट्रेन में जा बैठे। ये सभी क्रांतिकारी ट्रेन में सवार होकर स्वाधीनता संघर्ष का एक नया इतिहास रचने जा रहे थे। इस घटना के बारे में किसी ने कहा है कि मौत से बचना आसान है, लेकिन उस शाम लाहौर स्टेशन पर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
1: यात्रा के दौरान दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण वोहरा को तार भेजकर सूचना दी कि वे उन्हें कलकत्ता स्टेशन पर लेने आ जाएं। कलकत्ता में इनकी मुलाकात अतुल गांगुली, जीएन दास और फणीन्द्र घोष जैसे क्रांतिकारियों से हुई।
0: जी।
1: वहां उन्होंने अपने संगठन की एक शाखा भी खोली। यहां पर उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता में रहकर भगत सिंह ने बांग्ला भाषा भी सीखी।
0: कलकत्ता में ही इन क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू को निकट से देखा। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा इन क्रांतिकारियों के लिए पिता और मार्गदर्शक की तरह थे और दुर्गा भाभी माँ की तरह इनका ख्याल रखती थीं और क्रांतिकारी योजना बनाने में भी इनकी मदद किया करती थीं। इन सभी क्रांतिकारियों के साथ कलकत्ता में कुछ वक्त रहकर दुर्गा भाभी लाहौर वापस आ गईं। असेंबली में बम फेंकने की योजना भी कलकत्ता में ही तैयार हुई।
1: योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंका और गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे में इन दोनों को सजा दी गई। जल्दी ही ये भी सिद्ध हो गया कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह भी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में रखा गया।
0: चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने तय किया कि भगत सिंह और उनके साथियों को किसी तरह जेल से छुड़ाया जाए। इस समय दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी भी भूमिगत थीं। भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए 1 जून 1930 को जेल पर बम फेंका जाना था। बम ठीक तरह से बने हैं या नहीं ये देखने के लिए 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा, वैशंपायन और सुखदेव बम लेकर रावी नदी के किनारे गए। बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण वोहरा के हाथों में बम फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी अकेली हो गई।

0: क्रांतिकारी दल पर दूसरा वज्रपात ये हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी क्रांतिकारी यहाँ वहाँ बिखर कर काम करने लगे थे। ये तय किया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा के विरोध में कोई बड़ा कदम उठाया जाए।
1: बंबई के गवर्नर हेली की हत्या की योजना बनाई गई। इस पूरी योजना की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी ने खुद ली। वो अपने कुछ साथियों के साथ बंबई जा पहुंची। उनके साथियों में थे सुखदेव और पृथ्वी सिंह। क्रांति के क्षेत्र में पृथ्वी सिंह अनुभवी लोगों में गिने जाते थे। अमेरिका में बनी भारतीय क्रांतिकारियों की पार्टी के संस्थापक भी पृथ्वी सिंह ही थे। भारत लौटकर पृथ्वी सिंह को अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश में फांसी की सजा हुई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई।
0: गवर्नर हेली शाम को अपने बागीचे में बैठा करते थे। योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी ने पारसी महिला के वेश में अपने मित्र शिंदे की गाड़ी में बैठकर उसके ड्राइवर बापट के साथ हेली के घर जाने का निर्णय किया। सुखदेव और पृथ्वी सिंह उनके अभिभावक के वेश में उनके साथ गए। तय ये हुआ कि दुर्गा भाभी गवर्नर हेली को बातों में उलझाकर उन पर गोली चला देंगी। बाकी लोगों ने भी विरोध किया तो सुखदेव और पृथ्वी सिंह भी गोली चला देंगी।
1: योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी पृथ्वी सिंह और सुखदेव के साथ कार में सवार होकर गवर्नर के बंगले पहुंची। गवर्नर हेली घर पर नहीं मिले। बहुत देर तलाश करने के बाद ये तीनों गवर्नर के घर के पास लेमिंगटन रोड पुलिस थाने पहुंचे। उस थाने पर ज्यादातर गोरे पुलिस अधिकारी थे। रात 1 बजे पुलिस की एक गाड़ी आई और उसमें से एक महिला और कुछ गोरे अफसर उतरे। इन तीनों क्रांतिकारियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। पृथ्वी सिंह चिल्लाकर बोले, शूट। दुर्गा भाभी ने उस महिला को छोड़कर बाकी गोरे अधिकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। पृथ्वी सिंह और सुखदेव भी गोली चलाने लगे। गोलियां चलती देख पुलिस अधिकारी थाने से बाहर आए और आक्रमणकारियों को उन्होंने घेरना चाहा। क्रांतिकारी वहां से भागे और अपने ठिकाने पहुंचे। पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी के ड्राइवर बापट को पकड़ लिया और उसे लेकर क्रांतिकारियों के ठिकाने पहुंचे। पुलिस को देखकर दुर्गा भाभी, पृथ्वी सिंह और सुखदेव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। पृथ्वी सिंह साधु के वेश में पैदल चलकर नौसारी पहुंच गए और दुर्गा भाभी अपने बच्चे को लेकर सुखदेव के साथ कानपुर चली गई। बंबई हाईकोर्ट में 10 लोगों पर लेमिंगटन शूटिंग केस चला और 4 मई 1931 को सभी निर्दोष घोषित कर दिए गए।
0: दुर्गा भाभी के जीवन में दूसरा वज्रघात हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके संरक्षक और अभिभावक चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में ब्रिटिश अधिकारियों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद के जाने के बाद दुर्गा भाभी अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। वे इधर उधर आश्रय पाने के लिए भटक रही थी। दुर्गा भाभी को अपने से ज्यादा चिंता अपने पुत्र शचिंद्र की थी। उसे परेशानियों से बचाने के लिए और उसकी शिक्षा के लिए वे दिल्ली में रहने लगी। इस बीच पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रहती थी।
1: दुर्गा भाभी जब लाहौर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में उन्हें 3 साल तक नजरबंद रखा गया। उसके बाद दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद चली गईं, जहां उन्होंने एक कन्या विद्यालय में नौकरी कर ली। फिर वो दिल्ली पहुंच गईं। उनकी कर्मठता, त्याग और कार्यकुशलता को देखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें चुना गया। 1940 से ही वे उत्तर भारत में पहले मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना के लिए कोशिश कर रही थी। आजादी के बाद दुर्गा भाभी ने लखनऊ को अपना स्थायी निवास बनाया। 7 फरवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मॉन्टेसरी सोसाइटी की नींव रखी और दुर्गा भाभी को उसके प्रबंधन का काम सौंपा।
0: 1983 तक दुर्गा भाभी इस संस्था के प्रबंध समिति में रही, फिर लखनऊ छोड़कर वे गाजियाबाद आ गई। लखनऊ छोड़ते समय उन्होंने अपना निवास संस्था को दान कर दिया। आजादी के बाद उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 51,000 की राशि भेंट की गई, लेकिन दुर्गा भाभी ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इन पैसों से एक शहीद स्मारक बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भारत के इतिहास और देश की गौरवशाली परंपरा को जानने का मौका मिल सके।
1: 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की आयु में दुर्गा भाभी का गाजियाबाद में निधन हो गया। दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त ने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त और समाज सेविका को हमेशा हमेशा बहुत श्रद्धा के साथ में याद किया जाएगा।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का कार्यक्रम क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के जीवन पर केंद्रित था।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्टोन हाइट की किंवदंती और मलक्का का पतन। ये उस दौर की बात है जब मलक्का का महान बंदरगाह शहर समृद्ध था, व्यापार में सक्रिय था और पूर्ण व्यवस्था के साथ शासित था। उस समय शहर पर सुल्तान अहमद शाह का शासन था और शहर की प्रसिद्ध किलेबंदी पत्थर से नहीं बल्कि खजूर के पेड़ों के मजबूत तनों से बनी थी। कहानी 10 पुर्तगाली जहाजों के आगमन से शुरू होती है। बेड़े के कप्तान ने सुल्तान को शानदार उपहार भेंट किए, सोना चांदी के सिक्के, बढ़िया कपड़े और जंजीरें। सुल्तान बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसके बुद्धिमान मंत्रियों बेंधारा और तेमेंगोंग को एक अनजाना डर सता रहा था। उन्होंने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, महाराज, इन गोरे लोगों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, इनसे कोई भला नहीं होगा। सुल्तान ने विदेशियों की उदारता से प्रभावित होकर अपने सलाहकारों की बात अनसुनी कर दी। शाही अनुग्रह के इस क्षण का लाभ उठाते हुए पुर्तगाली कप्तानों ने एक विनम्र अनुरोध किया, हमें केवल एक जानवर की सूखी खाल के बराबर जमीन का टुकड़ा चाहिए। इतने छोटे से टुकड़े में कोई खतरा ना देखते हुए सुल्तान हंसा और अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि पुर्तगाली भू राजनीतिक छल के उस्ताद थे, उन्होंने जानवर की एक खाल ली और बड़ी सटीकता के साथ उसे काट कर एक लंबी पतली रस्सी बना ली। उन्होंने इस रस्सी का उपयोग जमीन के एक विशाल चौकोर हिस्से को मापने के लिए किया, जो सुल्तान की कल्पना से कहीं बड़ा था। उस जमीन पर उन्होंने तुरंत ईंटों और चूने से पत्थर का घर बनाना शुरू कर दिया। जब मलक्का के लोगों ने दीवारों में अजीब छेद बनते देखे और पूछा कि ये क्या है, तो पुर्तगालियों ने झूठ बोला, ये वो खिड़कियां हैं जिनका उपयोग गोरे लोग करते हैं। वास्तव में ये तोपों के लिए बनाए गए छेद थे। रात के अंधेरे में पुर्तगालियों ने अपने जहाजों से गुप्त रूप से भारी तोपें और बंदूकें उतारी और उन्हें बक्सों में छिपा दिया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उनमें केवल कपड़े हैं। मंत्रियों ने राजा से निर्माण रोकने की आखिरी बार विनती की, लेकिन सुल्तान अडिग रहा। ये गोरे लोग हमारे देश को किसी भी तरह बर्बाद नहीं कर सकते। धोखाधड़ी अपने चरम पर तब पहुंची जब मलक्का के लोग शांति की नींद सो रहे थे। अचानक पत्थर के घर की खिड़कियों से आग के गोले बरसने लगे। पुर्तगालियों ने शहर पर बमबारी की और खजूर के तनों वाली किलेबंदी, जिसे कभी मजबूत माना जाता था, टुकड़ों में बिखर गई। सुल्तान अहमद शाह और उनकी प्रजा अंधेरे में भागने को मजबूर हो गए। सुल्तान मुआर, फिर जोहोर और अंत में बिनटोंग भाग गए और मलक्का का स्वर्णिम शहर हमेशा के लिए फ्रैंक्स के हाथों में चला गया। ये मलय कथा हालांकि यूरोपीय तथ्यों से भिन्न हो सकती है, एक गहरा नैतिक सबक देती है। अजनबियों के बीच अनुबंध और उनकी अस्पष्टताओं का उपयोग अक्सर विजय के हथियार के रूप में किया जाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे एक सभ्यता की उदारता को ही उसके विनाश का कारण बना दिया गया।
1: भारत भवन के अंतरंग सभागार में विगत दिवस युवा गायिका आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार ने प्रस्तुति दी। गायन पर्व का समापन रविवार को होगा। अंतिम दिन अर्थात आज डॉक्टर ऋषि मिश्र के गायन के बाद गायिका मंजरी असनारे केलकर की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। शनिवार को ही देहरादून की गायिका शरण्या जोशी ने रविंद्र भवन में गजलों की प्रस्तुति दी। और अब जानकारी आज के दिन भोपाल में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में सारस महोत्सव 2026 के अंतर्गत आज फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर की प्रतिष्ठित रंगायन आर्ट गैलरी में रविवार 5 जुलाई से कला प्रदर्शनी चित्रांकन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ शाम 7 बजे किया जाएगा।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था।

शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अरकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अरकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का षष्ठम भाग सुनेंगे।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का ऐसा गुच्छा जिसकी हर पंखुड़ी में इतिहास की धड़कन बसती है, जहां शब्द दीपक बनकर जलते हैं और भावनाएं गंगा जल सी मन को पवित्र करती चली जाती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
2: श्रोताओं, पिछले अंक में आपने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ सुना, जहां कर्ण की साधना उस दीपक की तरह दिखाई दी जो आंधियों के बीच भी अपनी लौ बचाए रखता है। महेंद्र पर्वत की नीरवता में बैठा वह सूर्य पुत्र अपने भाग्य से नहीं, स्वयं से युद्ध कर रहा था। गुरु परशुराम के चरणों में बैठकर वह केवल अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा रहा था, वह अपने जीवन की टूटी हुई तकदीर को नए पुरुषार्थ से गढ़ने में लगा था। किंतु श्रोताओं, कहा भी तो गया है कि सत्य की डोरी चाहे जितनी लंबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति ने भी वहीं अपना दांव चला। विषधर का दंश सहकर भी कर्ण की पलकों का न हिलना उस अग्नि का प्रमाण बन गया जो साधारण मनुष्य में नहीं जलती, और उसी क्षण गुरु परशुराम के सामने वह रहस्य खुल पड़ा जिसे कर्ण अपने प्राणों की तरह छिपाए फिर रहा था।
0: श्रोताओं, विश्वास जब टूटता है तो उसकी प्रतिध्वनि पत्थरों में नहीं, हृदय में सुनाई देती है। परशुराम के भीतर भी यही तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका अटल व्रत, दूसरी ओर पुत्र व्रत प्रिय शिष्य के प्रति उमड़ता वात्सल्य। मानो धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हों और दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हो। और कर्ण वो अपराधी की तरह नहीं, तपस्वी की भांति खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ये पीड़ा है कि जिसने उसे अपने हृदय का स्थान दिया, उसी के विश्वास को वो अनजाने में छल बैठा। यही कारण है कि ये प्रसंग केवल शाप की कथा नहीं बनता, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस महासंग्राम का स्वरूप ले लेता है, जहां प्रेम और प्रतिज्ञा दोनों अपनी अपनी कीमत मांगते हैं।
2: श्रोताओं, समय का रथ अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शब्द अंगार बनेंगे, आंखें अश्रु से भरेंगी और नियति अपना कठोर निर्णय सुनाएगी। गुरु का क्रोध वज्र की तरह गिरेगा, किंतु उसके भीतर स्नेह की धधकती राख भी दिखाई देगी। और कर्ण वह टूटकर भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर का स्वाभिमान हिमालय की चोटी की तरह अडिग है। तो आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 11, 12 और 13 की ओर, जहां करुणा महाकाव्य बनती है, वियोग इतिहास रचता है और गुरु शिष्य का ये संबंध मानवता की सबसे उज्जवल गाथाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दूसरे सर्ग के भाग 11 का काव्य पाठ और चर्चा।
0: तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहां उतारूं मैं, लेकिन कहां उतारूं मैं।
2: इस पद पर बोला कर्ण,
3: दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी, परसाई ये अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा।
2: परशुराम ने कहा,
0: कर्ण तू बेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप समय पर, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा।
2: परशुराम आहत है, उन्हें छल से अधिक उस विश्वास के टूटने की पीड़ा है जिसे उन्होंने पुत्रवत संजोया था। और कर्ण, कर्ण अपराधी सा नहीं तपस्वी सा खड़ा है, दंड को दया समझकर स्वीकारने को तत्पर। श्रोताओं, वे बड़े खरे लोग थे जो अपने धर्म से तनिक भी डिगते नहीं थे, प्रेम को अपने स्वार्थ सिद्धि की ढाल नहीं बनाते थे। आज हम सभी इन मानव मूल्यों और नैतिक बल से कितनी दूर निकल चुके हैं। यही श्राप की त्रासदी है जब स्नेह को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है।
0: श्रोताओं, कर्ण पर श्राप का वज्र गिरा, पर उसके साथ आशीर्वाद की धूप भी झर पड़ी। कर्ण व्याकुल है, उसे जीवन नहीं साधना के निष्फल हो जाने का दुख साल रहा है। और परशुराम, वे भी पत्थर नहीं है, व्रत की मर्यादा उन्हें कठोर बनाती है, पर भीतर का स्नेह बार बार आंखों तक आ जाता है। वे शस्त्र का तेज हरते हैं, पर कर्ण के पौरुष पर विश्वास भी जताते हैं, दंड देते हैं, पर भविष्य की कीर्ति का वरदान भी। यही भाग 12 की भूमि तैयार होती है, जहां शाप केवल क्षति नहीं चरित्र की अग्नि परीक्षा बन जाता है। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, पर दोनों के हृदय भीग रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 12 का काव्य पाठ।
2: कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे,
3: हाय हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
2: परशुराम ने कहा,
0: कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो, इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी, अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओ, अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो।
2: यह आत्मसंयम की चरम स्थिति है। गुरु स्वयं को कठोर बना रहे हैं ताकि उनका व्रत न टूटे। यह विछोह करुण और उदात्त दोनों है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूल गुरोह कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करना ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु चरणों की पूजा करना ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु का वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। श्रोताओं, अब यदि हम इस श्लोक की भावना को परशुराम और कर्ण के प्रसंग से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि परशुराम के भीतर केवल क्रोध नहीं था, वहां गुरु का वही विराट स्वरूप उपस्थित था। उन्होंने श्राप दिया क्योंकि व्रत और धर्म उनके लिए सर्वोपरि थे, किंतु कर्ण के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज हर लिया पर उसकी कीर्ति का वरदान भी दिया। यह द्वंद नहीं गुरु हृदय की व्यापकता है। कर्ण एकलव्य से कम नहीं था गुरु भक्ति में। श्रोताओं, कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका कवच कुंडल नहीं, उसकी गुरु भक्ति है। जब सत्य उजागर हुआ, जब श्राप मिला, तब भी उसने दृष्टि उठाकर प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वह गुरु चरणों में झुक गया। जिसने उसे दंड दिया उसी के प्रति उसका सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ। यही तो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, जहां अहम नहीं केवल समर्पण बोलता है। यही गुरु भक्ति कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने गुरु का मान रखे वही सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है।
0: आज के समय में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक पात्र और कुपात्र का विवेक खो बैठते हैं। कहीं स्वार्थ, कहीं पक्षपात, कहीं निजी लाभ शिक्षा के पवित्र संबंध को कलुषित कर देते हैं। गुरु का स्थान तभी ऊंचा है जब वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और शिष्य के उत्थान को अपने अहम से ऊपर रखे। परशुराम का यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि गुरु का धर्म कठोर हो सकता है पर उसका हृदय करुणामय होना चाहिए। जहां व्रत और प्रेम साथ चलें, वहीं सच्चा शिक्षण जन्म लेता है।
2: श्रोताओं, यही से द्वितीय सर्ग के अंतिम चरण की महाकाव्यात्मक भूमिका प्रकट होती है। श्राप और आशीष, त्याग और करुणा दोनों मिलकर इस क्षण को दिव्य वियोग में रूपांतरित कर देते हैं। गुरु शिष्य को दूर भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेम का परम रूप विरह ही होता है। आइए अब बढ़ें उस अंतिम प्रसंग की ओर, जहां काल का रथ अविराम है और चलना ही नियति। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, भाग 13, जहां करुणा महाकाव्य बनती है और वियोग इतिहास रचता है। परशुराम कहते हैं,
0: बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जाए। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए।
2: इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरि श्रृंगा से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में जैसे चांद चलता हो गगन में। यह गुरु का आंतरिक द्वंद है, धर्म और स्नेह का संघर्ष। बाहर कठोरता, भीतर करुणा की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह मौन विदाई है, शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल अश्रु संवाद कर रहे हैं। यह केवल गुरु शिष्य का वियोग नहीं, यह धर्म और प्रेम के बीच की मौन अग्नि परीक्षा है। परशुराम की बुद्धि अडिग है, पर हृदय भीग चुका है। कर्ण की साधना टूट गई, किंतु उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चरण धूलि लेकर चला है, मानो अपने जीवन की शेष ज्योति उसी भक्ति से प्रज्वलित करने लगा हो।
0: श्रोताओं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग को केवल करुण घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे मनुष्य के भीतर चलने वाले सनातन संघर्ष, कर्तव्य और करुणा, व्रत और वात्सल्य, न्याय और प्रेम का महाभाव बना दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग काल की सीमाओं से परे आज भी उतना ही स्पंदित है जितना तब था, क्योंकि मनुष्य का हृदय आज भी उसी द्वंद्व से गुजरता है। श्रोताओं, इसी करुण दीप्त क्षण के साथ द्वितीय सर्ग को प्रणाम। काव्य गुंजन के आगामी अंक में हम इस महाकाव्य यात्रा के अगले चरण की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नियति का रथ और भी वेग से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: और मैं संदीप शर्मा,
4: और मैं दीपक नेमा।
2: श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
0: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
1: काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ। आज हमने इस कार्यक्रम का षष्ठम भाग सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ आरंभ होगी। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी भाई महाराज सिंह के जीवन पर। शाम 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज का विषय है नशे का साथ जिंदगी का नाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकार। शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय होगा साइबर क्राइम। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ शिवेंद्र कुंभकार से डॉक्टर रानी रायकवार की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हम करगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का द्वितीय भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के जीवन पर। रात्रि के 9 बजे सुने देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम और 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज शाम इस कार्यक्रम का 6वां भाग आप सुन सकते हैं। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकते हैं।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। रविवार की दोपहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, रविवार का दिन ऐसा होता है जिसमें जिंदगी कुछ थमी थमी सी चलती है। हम सप्ताह भर के जो छूटे हुए काम होते हैं उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा भी करते हैं, लेकिन कुछ मनोरंजन की बात भी होती है। हमारा ये कहना था कि रविवार के इस दिन आप सब कुछ कीजिए, अपने छूटे हुए काम भी निपटाइए, लेकिन जो ये रिमझिम सी बारिश शुरू हुई है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आप जानते ही हैं कि आज 5 तारीख है और जो जुलाई का पहला सप्ताह होता है, 1 से 7 जुलाई तक का जो समय होता है, इस बारिश के मौसम को देखते हुए ही वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और देशव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम इसमें आयोजित होता है। तो आज जबकि छुट्टी का दिन है तो अपने छूटे हुए काम तो आप ज़रूर कीजिए, इसके साथ ही एक पौधा लगाने की प्लानिंग भी कर लीजिए। अपने कुछ दोस्तों से बात कीजिए, अपने साथियों से बात कीजिए, अपनी कॉलोनी में लोगों से बात कीजिए और पौधारोपण का कार्यक्रम ज़रूर कीजिए। रविवार का दिन है, इससे अच्छा अवसर भला और कब होगा। तो वृक्षारोपण कीजिए और इसके साथ ही उसे पानी भी दीजिए, उसकी देखरेख कीजिए, उसे एक पौधे से वृक्ष के रूप में बढ़ाइए ताकि आपका वृक्षारोपण करना सार्थक हो। और अब आपको बता दें कि क्या कुछ ख़ास आप सुनेंगे आज दिन में रेडियो आज़ाद हिंद से। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आज़ादी के, देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम होता है। इसके बाद भारत भारती कार्यक्रम का प्रसारण होगा 1 बजे से। दिन में 2 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक और 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनो कहानी। इसमें आज हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी 2 बहनें। और उसके बाद पुनः 3 बजे से आप सुन सकते हैं तराने आज़ादी कार्यक्रम और कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद। एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आज़ादी के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने आजादी के। देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति ये देशगान।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। लीजिए प्रस्तुत है अगला देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

श्रोताओं, आज भारत भारती कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी की सूंधी सी महक आपके लिए। जरा पहचानिए तो आपको हम किस ओर ले चल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है मिट्टी की सौंधी सी महक बघेल खंड की धरती से उठती हुई। भारत भारती के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, लोक संगीत यानी जन जन का संगीत, ऐसे गीत जो हमारी मिट्टी में रचे बसे हैं, सदियों से हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जीवन के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गीत है सोहर, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो आइए जीवन के उत्सव का ये गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों की आवाजों में।

बच्चे का जन्म हुआ और महिलाओं ने मिलकर गाया सोहर। जी हाँ, सोहर बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत है। वैसे बच्चे की बधाई तरह तरह से दी जाती है। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत तरह से मिठाइयाँ बांटकर बधाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बधाई गीत का एक अपना ही महत्व है। तो आइए वही बधाई गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद माँ के द्वारा कुआं के पूजन का विधान है। जी हाँ, सिर पर गगरी रख माँ कुएं तक जाती है और घर के सभी लोग उसके पीछे पीछे साथ में गाते बजाते पहुँचते हैं कुएं तक और उसका पूजन करते हैं। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं। स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पारंपरिक रचना।

बघेलखंड का लोक संगीत, जी हाँ, सरस, मीठा, मधुर। इस लोक संगीत में संस्कार गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। आइए कुछ शादी ब्याह से संबंधित गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में। भाई, दूल्हा तैयार हो चुका है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है और घर के लोग बारात लेकर निकलने की तैयारी में हैं। अब ये कि बनरा गाया जाएगा, जी हाँ, यही वो लोकगीत है जो इस अवसर पर गाया जाता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, लोक जीवन में कितनी अनुपम और सुंदर बातें होती हैं। जी हाँ, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो या तो कान्हा कहलाता है या राम, माँ कौशल्या हो जाती है या यशोदा कहलाती है। इसी तरह जब शादी के लिए तैयार होता है दूल्हा तो उसमें सभी लोग छवि देखते हैं भगवान श्री राम की, और ये बारात चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन हम अपने लोकगीतों में गाते हैं कि बारात चली जनकपुर को। अब जब बारात जनकपुर पहुंची तो भाई वहां स्वागत की तैयारी भी पूरी तरह से है, बारात द्वार पर है। अब उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो है गैलहाई। आइए सुनते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

बारात का स्वागत तो एक बात, लेकिन कुछ हंसी ठिठोली भी होती है। जी हाँ, एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरे से बातचीत में हम खुल जाएं, इस उद्देश्य को लेकर गारी भी गाई जाती है। कुछ छेड़छाड़, थोड़ा सा आमोद प्रमोद। आइए सुनते हैं द्वारचार की गारी, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के।

श्रोताओं, ये था दूर से बारात को देखना। जी हाँ, कभी छज्जे से तो कभी दीवार से लगे हुए एड़ियां उठाकर पूरे उत्साह के साथ और थोड़ी सी शरारत भी की गई, गारी गाई गई, बारातियों की थोड़ी सी खिंचाई की गई। जी हाँ, लेकिन अब बारात लग चुकी है द्वार पर। घराती और बाराती दोनों का ही उत्साह देखते ही बन रहा है। इस अवसर पर गाया जाता है बारात के स्वागत में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: घर में बिटिया की शादी है। कितनी ही भावनाएं मन में हिलोरें ले रही हैं। खुशी है कि बेटी सुहागन होगी और वहीं बचपन से लेकर आज तक जुड़ी कितनी ही यादें बार बार आती हैं, मन को भिगा जाती हैं। कभी ये लगता है कि बिटिया इतनी जल्दी बड़ी हो गई और कभी ये लगता है कि कितनी खुशी की बात है कि बारात द्वार पर आई है। और इन्हीं मनोभावों के बीच बेटी के अनंत सुहाग की कामना लिए गाया जा रहा है सुहाग। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।
1: मोरे के बोला चाहो सुहाग गीत मवा प्रसंग है कि जौने घर में बिटिया कुमार होती सबको सो जाती सब सो जाती लेकिन वह घर के प्राणी बाबा आजा काका उन्हें स्वामी उन्हें कितनी चिंता होती वह चिंता कर लेते हैं अपना के सामने हाजिर है।

श्रोताओं, हंसी ठिठोली एक जगह, लेकिन बारातियों से बड़ा भला कौन मेहमान, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी भी पूरे जोर शोर से है। जी हाँ, नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और बेली जा रही है पूड़ियाँ। बारातियों को खिलाई जाएंगी ये पूड़ियाँ, और ये पूड़ी भी यूं ही थोड़ी बेली जाएगी, यहाँ भी तो कोई मंगल गीत होगा। जी हाँ, गांव भर की महिलाएं इकट्ठी हैं, बारातियों के लिए बेल रही हैं पूड़ी और इस अवसर पर खुशी के साथ मंगल गीत गा रही हैं, जिसे हम कहते हैं बेलनहाई। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बेलनहाई गाते हुए पूड़ियां तो बन गईं और अब समधी जी तैयार हैं जेवनार के लिए। और खाने के इस अवसर पर गारी तो होगी, लेकिन मर्यादित शब्दों में। और आपको पता है, बघेलखंड में नाम ले लेकर गारी देने का रिवाज है। और सबसे मजेदार बात ये कि अगर किसी का नाम न लिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, यानी गारी दी भी जाती है प्रेम से और ली भी जाती है प्रेम से।

0: जितने जने हमारे यहाँ थोड़ी क्या सुना थे उनसे सबसे पूछी थी, कहा थे हमरे बघेल खंड में जाकर नाम लेके गाली ना गाई जाओ, बुरा मान जाके, बुरा बिल्कुल ना मानब। हम सबसे पूछी थे अपना पंचन के बगल से निकली 50,000 छोकरी।
1: कहो कैसे निकली?
0: आज जैसे बजे से तुम ना गाए से हाथी।

और श्रोताओं, यूं ही गाते गुनगुनाते हंसी ठिठोली करते आमोद प्रमोद करते खाते खिलाते सभी रस्में होने लगीं और हर रस्म के साथ कोई न कोई लोकगीत जरूर जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये भंवरी जिसके भाव बहुत ही करुण हैं। तो इसी भाव के साथ सुनिएगा मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बघेली संस्कार गीतों की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति ये लोकगीत स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, बारात द्वार पर आई, उसका स्वागत किया गया, कुछ आमोद प्रमोद भी हुआ, गारी गाई गई और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। विवाह की इस मंगल बेला में अब गाई जा रही है अंजुरी। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

विवाह संपूर्ण हुआ और अब बेला आई विदाई की। मन भीग भीग जा रहा है। वो बिटिया जिसने इस आंगन में जन्म लिया, यहीं खेली कूदी बड़ी हुई, संस्कार पाए, माता पिता की लाड़ली, भाई बहनों की दुलारी, आज इस आंगन को छोड़कर चली जाएगी। कैसी कठिन घड़ी है कि माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विदाई गीत। कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

श्रोताओं, विदा होकर बिटिया आ गई अपने ससुराल। जी हाँ, ससुराल में खुशी का वातावरण, लोग प्रसन्न हैं कि गृह लक्ष्मी आ गई। और यहाँ भी तो घर की लक्ष्मी को घर में प्रवेश करवाने से पहले कितनी ही रस्में हैं। गृह लक्ष्मी का स्वागत हो रहा है परछन से, तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज थी महक बघेलखंड की माटी की। जी हाँ, आपने सुने कुछ बघेली लोकगीत और वहाँ के कुछ संस्कार गीत। हमारे आज के कलाकार थे मणिमाला सिंह और साथी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही संपन्न होता है भारत भारती का आज का अंक। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। देश का चैनल देश के लिए।
0: ट पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
3: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
4: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
3: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
4: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
3: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
5: चलो चलो बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई ना आने में।
6: अरे चलो चलो चलो, चलो, चलो।
5: गुरुजी आते ही होंगे ना।
6: अरे आ रही शायद गुरुजी।
5: आ गए। नमस्ते गुरुजी।
6: नमस्ते गुरुजी।
7: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं भाई आप लोग?
5: ठीक है गुरुजी।
7: अरे भाई, आज तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अरे यानी 20 लड़कियों में से 4 लड़कियां अनुपस्थित हैं। अच्छा, और लड़के कितने अनुपस्थित हैं?
5: गुरुजी 5 लड़के अनुपस्थित हैं।
7: 30 लड़कों में से 5 अनुपस्थित हुए और 20 लड़कियों में से 4 लड़कियां अनुपस्थित हुईं। तो बच्चों, क्रमशः अनुपस्थित लड़कों और अनुपस्थित लड़कियों के प्रभाज कौन बताएगा?
6: मैं बताऊंगी। मैं
5: नहीं गुरुजी, आज मैं बताऊंगी।
7: हाँ भाई, देखो कंचन कभी कुछ नहीं बताती है, आज उसने हाथ उठाया है। ठीक कंचन, तुम बताओ।
4: गुरुजी, 30 लड़कों में से 5 लड़के अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित लड़के 5/30 यानी 1/6 हुए ना?
7: बिल्कुल ठीक
4: जी। और इसी तरह 20 लड़कियों में से 4 लड़कियां अनुपस्थित हैं, अर्थात अनुपस्थित लड़कियां हुई 4/20 यानी 1/5।
7: बहुत बढ़िया
4: है ना गुरुजी?
7: हाँ।
4: तो अब कुल अनुपस्थित लड़के तथा लड़कियां हुए 1/6 धन 1/5 यानी 11/30।
7: बिल्कुल ठीक कंचन।
4: तो इनमें से लड़कों का प्रभाज हुआ 1/6 भागित 11/30 अर्थात 5/11
7: यानी
4: 0.454।
7: ये भी बिल्कुल ठीक भाई।
4: जी गुरुजी। तो इसी प्रकार अनुपस्थित लड़कियों का प्रभाज हुआ 1/5 भागित 11/30 अर्थात 6/11 यानी 0.545।
7: अति सुंदर, अति सुंदर। वाह, बैठ जाओ, तुम्हारा गणित तो एकदम सही है।
4: धन्यवाद गुरुजी।
7: बच्चों, गणित ही विज्ञान की आधारशिला है। आजकल आप तो जानते ही हैं, हमारे वैदिक गणित की काफी चर्चा है। भारत में वेद को आधार मानकर अनेक गणितज्ञ महर्षि हुए हैं। इनमें बोधायन, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि प्रमुख है। महर्षि ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम गणित का वर्गीकरण किया। अज्ञात राशियों से संबंध रखने वाला बीजगणित कहलाया और क्षेत्र गणित को ज्यामिति कहा गया।
4: अच्छा गुरुजी। और गुरुजी एक बात और, मेरे साथ साथ अंजू को भी गणित बहुत अच्छा लगता है।
6: गणित बहुत पसंद है।
7: पसंद है तो ध्यान से सुनो और बातें मत करो।
4: जी गुरुजी।
7: हाँ, अच्छा, सच तो यह है बच्चों कि महर्षि बोधायन और वाराहमिहिर के बाद वैदिक गणित को आगे बढ़ाने का काम महर्षि ब्रह्मगुप्त ने ही किया। वे अपने समय के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे।
6: गुरुजी, आज हमें महर्षि ब्रह्मगुप्त के विषय में ही बताइए ना।
4: हाँ हाँ गुरुजी, बताइए ना।
7: ठीक, तो ध्यान से सुनो बच्चों। महर्षि ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैनी में विक्रमी 7वीं शताब्दी में अर्थात सन 598 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत की रचना की। इस ग्रंथ में त्रिकोणमिति, खगोल विद्या और गणित से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण है। आओ बच्चों, तुम्हें चाप वंश के राजा व्याघ्रमुख के दरबार में लिए चलते हैं, जहां वे राज ज्योतिषी हो गए थे।
4: हाँ हाँ, चलो चलो चलो अंकिता, अंजू चलते हैं।

0: महाराज को सभी सभासदों की ओर से नए संवत्सर की बधाइयां, शुभकामनाएं।
1: राज ज्योतिषी महर्षि ब्रह्मगुप्त जी, आपको और सभी सभासदों को भी नए संवत्सर की बधाइयां, शुभकामनाएं। महर्षि, कृपया ये बताइए कि ये नया वर्ष कैसा रहेगा, ये संवत्सर कैसा है?
0: राजन, जहां तक संवत्सर की बात है तो यूं समझिए, प्रकृति में पदार्थ ब्रह्म है, क्रियाशक्ति माया है और स्पंदन प्राण है। सृष्टि के कार्यकलापों को समझने के लिए इन तीनों तत्वों को, इनके बदलते स्वरूपों तथा धरातलों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि सृष्टि को। सृष्टि ऋतु से होती है। पृथ्वी सूर्य के क्रांति वृत्त पर एक चक्कर लगाती है, उसे एक संवत्सर कहते हैं। सृष्टि का मूल ऋतु स्वयंभू है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती सिवाय इसके कि ये मूल ऋषि प्राणों का ज्ञान क्षेत्र है। ऋषि प्राण सात हैं, पितर, देव, गंधर्व, पशु आदि प्राण उत्पन्न होते हैं। स्वयंभू की गतिमान शक्ति अर्थात काल से संवत्सर बनकर सृष्टि को उत्पन्न करती है।
1: महर्षि, संवत्सर का शास्त्रीय स्वरूप आपने बताया, अब कृपया इस संवत्सर का फलादेश भी बताएं।
0: महाराज, इस संवत्सर का स्वामी राहु है। इसका प्रारंभ कन्या लग्न में हुआ है, फिर वर्ष के राजा और मंत्री दोनों प्रमुख पद शुक्र के पास हैं। इतना ही नहीं, दुर्गेश का पद भी शुक्र को ही प्राप्त है। इस तरह आकाशीय ग्रहों में इस वर्ष शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा।
1: अर्थात
0: राजन, ये वर्ष संकटों से भरा है और विशेष सावधानी बरतने की अपेक्षा करता है। कारण, शुक्र के प्रभाव से वर्षा में कमी, प्राणियों को कष्ट और महंगाई का संकेत है। वर्ष लग्न कन्या होने के कारण घी, तेल, रस पदार्थों में तेजी, महामारी का भी योग बनता है। फिर वृष राशि में ग्रहण लेने से विनाशक भूकंप और जन धन की हानि के भी योग है। महाराज, देश दुनिया के लिए अच्छे योग नहीं है। गेहूं, चावल, चना, ज्वार, मूंग, मोट, सोना, चांदी, तांबा सभी लाल पदार्थों में तेजी आएगी। सूर्य और राहु के कारण प्रजा और शासक के संबंधों में भी बिगड़ाव आ सकता है। फिर तुला का शनि तबाही के योग निर्मित कर सकता है।
1: हाँ महर्षि, योग तो अत्यंत दुष्कर है, फिर इनसे बचाव के उपाय भी तो होंगे।
0: क्यों नहीं राजन, कई अनुष्ठान हैं जिनसे अनिष्ट से बचा जा सकता है।
1: तो कोई अच्छे से अनुष्ठान का विधान ढूंढकर बताएं, ताकि राज्य में सुख शांति रहे और अनिष्ट से बचा जा सके।
0: अवश्य महाराज, हम शीघ्र ही सभी पहलुओं पर विचार कर सर्वोत्तम अनुष्ठान के विधान की अनुशंसा करते हैं।
1: महामात्य, आप राज पुरोहित जी को भी सूचित कर दें कि वे महर्षि से संपर्क कर लें।
2: जैसी आज्ञा महाराज।
3: प्रणाम आचार्य श्री।
0: आयुष्मान भव, लगता है आप संध्या वंदन से निवृत्त हो गए।
3: जी हाँ, आप तो अलस भोर में ही प्रातःकालीन सभी कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं।
0: हाँ वत्स, ये क्रम बाल्यकाल से ही निरंतर चला आ रहा है।
3: आचार्य श्री, अन्यथा ना लें तो एक बात कहूँ?
0: कहो कहो, हमें सभी तरह की बातें सुनने का अभ्यास है। वत्स, तुम्हारे मन में जो भी बात है निसंकोच भाव से कह डालो, कह देने से मन हल्का हो जाता है।
3: नहीं, ऐसी कोई अप्रिय बात नहीं है जिसे कहने में संकोच हो। वो आपको एकदम उत्फुल्ल और प्रसन्न मुद्रा में देखा तो हमसे रहा नहीं गया।
0: अच्छा, यानी अन्य दिनों में हम पर्याप्त दुखी नजर आते रहे हैं।
3: नहीं, कदापि नहीं। देखिए, हमारा मंतव्य था आज से पूर्व आप सदैव विचार मग्न दिखाई देते रहे, जैसे किसी गहन चिंतन में डूबे रहे हों।
0: वत्स, तुम्हारा प्रेक्षण सही हो सकता है, ये स्वाभाविक भी है। जब हम किसी कार्य को अनुष्ठान बनाकर उसमें पूरे मन से जुटे रहते हैं तो हर समय हम चेतन अवचेतन रूप से उसी में डूबे रहते हैं, जब तक कि वह अनुष्ठान पूर्ण ना हो जाए। वत्स, अब तक हम अपने ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को अंतिम रूप देने में संलग्न थे, आज ये कार्य पूर्ण हो गया है। हो सकता है कार्य के कुशल संपादन की आत्मसंतुष्टि ने हमारे मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता बिखेर दी हो।
3: क्या, ग्रंथ पूर्ण हो गया? कोटिशः बधाइयां आचार्य श्री, कोटिशः बधाइयां। यह तो सभी को विदित था कि आप आजकल कोई ग्रंथ लिखने में व्यस्त हैं। अनुमानतः यह ग्रंथ वैदिक गणित विषय पर है।
0: हाँ, इस ग्रंथ में हमने त्रिकोणमिति, खगोल विद्या और गणित से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं।
3: वाह।
0: साथ ही हमने महर्षि बोधायन द्वारा प्रारंभ किए गए बीज गणित को भी व्यवस्थित रूप दिया है। बीज गणित के विभिन्न समीकरणों को हमने एक वर्ण, अनेक वर्ण, मध्यमाहरण तथा भावित नाम दिए।
3: आचार्य श्री, ये एक वर्ण, अनेक वर्ण, इससे क्या तात्पर्य है?
0: एक वर्ण समीकरणों में अज्ञात राशि एक और अनेक वर्ण समीकरणों में अज्ञात राशि एक से अधिक होती है। फिर इस ग्रंथ का प्रथम पाठ तो वत्स तुम्हें ही करना है।
3: ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा आचार्य।
0: सौभाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं, है तो तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की समझ का अधिकार है।
3: आचार्य श्री, स्नेह और कृपा भाजन बनाने के लिए कृतज्ञ हूँ मैं आपका।
0: आभार प्रदर्शन की औपचारिकता छोड़कर अभ्यास सत्र के लिए सभा भवन में पहुँचने की शीघ्रता करें।
3: जो आज्ञा गुरुदेव।
0: चलिए आइए।
3: आचार्य श्री, भव्य एवं सफल अनुष्ठान आयोजन के लिए आपको कोटिशः बधाइयां।
0: वत्स, सही पूछें तो इस अनुष्ठान के आयोजन की सफलता का पूरा श्रेय राज पुरोहित जी को जाता है। उन्होंने जिस सांगोपांग विधि से अनुष्ठान की सभी पूजा अर्चना हवन आदि करवाए, निश्चय ही प्रशंसा और साधुवाद के सही अधिकारी हैं। फिर महाराज की श्रद्धा और निष्ठा का भी उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना तो सभी अनुष्ठान निष्फल होते।
3: पर आचार्य श्री, आपका मार्गदर्शन कम महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु क्षमा करें आचार्य श्री, ग्रह नक्षत्रों के व्यक्ति पर प्रभाव और अनुष्ठान द्वारा उनके निराकरण की बात का आधार स्पष्ट नहीं हो पाया।
0: वत्स, तुमने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के पाठ के समय पढ़ा होगा, ज्योतिष के गणित स्कंध के तीन भेद हैं, सिद्धांत, तंत्र और करण। सिद्धांत तो गणित ही है, तंत्र में साधन प्रमुख है और करण में ग्रह गणित रहता है। ज्योतिष गणित के भी दो भाग हैं, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। अब ग्रह नक्षत्रों का सभी प्राणियों पर निस्संदेह प्रभाव पड़ता है। ग्रंथों में अनेक उदाहरण दिए जाते रहे हैं कि अमुक दशा में उत्पन्न व तदजन्य प्रभावों में पले व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति एवं व्यवहारों में एक रूपता पाई जाती है।
3: क्षमा करें आचार्य श्री, एक ही समय एक ही अक्षांश पर या एक ही आरोग्यालय में एक ही समय उत्पन्न हुए सभी बालकों का ग्रहों नक्षत्रों का परिणाम अक्सर एक सा देखने को तो नहीं मिलता।
0: वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा निश्चय ही प्रशंसनीय है। एक बात यहाँ समझना आवश्यक है कि हमारे प्राचीन महर्षियों ने ज्योतिष में गणित और अध्यात्म का संयोग माना है। एक ही स्थान और एक ही समय में उत्पन्न शिशुओं के लिए ग्रह नक्षत्रों की गति और प्रभावों के अनुसार अच्छा अथवा बुरा समय निस्संदेह एक ही होगा, पर इस अच्छे अथवा बुरे समय में मिलने वाला फल व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के संचित कर्म के अनुसार होगा। मान लो ग्रह स्थिति से जातक को दान से रोजी रोटी की प्राप्ति का योग है, तो उसके संचित कर्म निर्धारित करेंगे कि दान ससम्मान मिलेगा या भीख के रूप में, यानी जातक राजपुरोहित बनेगा या भिखारी।
3: यदि यह सत्य है तो फिर अनुष्ठानों का महत्व क्या है?
0: वत्स, तुम्हारी आशंका गलत नहीं है। इसे यूं समझो, व्यक्ति समाज या संस्थान अथवा देश के जन्म का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्म का ये क्षण बताता है कि वो किन कर्म बीजों संस्कारों को लेकर जन्मा है। ये क्षण उसे विराट ब्रह्मांड में एक स्थान देता है। काल चक्र में यह स्थान सर्वथा अपरिवर्तनीय रहता है। अब काल परिभ्रमण के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह उसे अपने परिवर्तन क्रम के अनुसार प्रभावित करते रहेंगे। ये क्रम क्या और किस तरह है, इसे राशियां एवं ग्रहों की युतियां लग्न चक्र में उनकी स्थितियां तय करती हैं। ये सत्य का एक पक्ष है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि सब कुछ अपरिवर्तनीय है, पर यदि इसे सही ढंग से समझ लिया जाए तो जातक अपनी मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है और तब काल चक्र में अपनी स्थिति और उसे प्रभावित करने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम को पहचान कर ऐसे अचूक साधना विधान अपना सकता है जिनसे काल चक्र के अनुसार परिवर्तित होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम उसे क्षति न पहुंचाए या कम क्षति पहुंचाए।
3: अर्थात ज्योतिष के साथ साधना विज्ञान भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ।
0: हाँ, अवश्य। प्रत्येक दशा में परिवर्तन क्रम के अनुसार किस साधना विधान का चयन करना चाहिए, यह ज्योतिष का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है।
3: जी आचार्य श्री।
0: इस ज्ञान से लाभ उठाकर अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर उनके प्रभावों को निर्मूल नहीं तो उनसे अपनी सुरक्षा के उपाय तो कर ही सकता है। इसी हेतु प्राचीन काल से ही हमारे यहां धर्मानुष्ठानों उपासना क्रमों का विधान चला आ रहा है।
3: महर्षि, क्योंकि वेदों का नेत्र ज्योतिष माना जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं वेदों का संबंध पराविद्या से भी है।
0: हाँ, क्योंकि पराविद्या एक उच्च स्तरीय गणित है और ज्योतिष भी उसी स्तर की गणित विद्या है।
3: जी आचार्य।
0: ज्योतिष का तात्विक अर्थ शक्ति अर्थात नक्षत्र है। फिर ब्रह्मांड विद्या अर्थात ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को एक सामाजिक राजनैतिक प्रतीक भी प्रदान किए गए हैं। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, गुरु शुक्र मंत्री, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार तथा शनि सेवक होता है। ये प्रतीक मात्र हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र का, जिनकी परिधि में सृष्टि का घट घट आ जाता है। ये समग्र विज्ञान सम्मत विद्या है। वत्स, लगता है तुम्हारा समग्र विज्ञान सिद्धांत ग्रंथ का पाठ पूर्ण हो गया है। कहो, इस ग्रंथ के संबंध में तुम्हारी टीप क्या है?
3: आचार्य श्री, आपके इस ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में मैंने अनेक विशेषताएं रेखांकित की हैं। जैसे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में गणित और बीज गणित के अध्याय तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही इस ग्रंथ में आपने खगोलीय सिद्धांत का विवेचन और खगोलीय उपकरणों के निर्माण और उपयोग संबंधी व्यवस्थित जानकारी भी संकलित की है।
0: हाँ, ज्योतिष गणित और बीज गणित को हमने गणित की दो शाखाएं माना है। बीज गणित को व्यवस्थित रूप देते हुए हमने इसे कुट्टक गणित अथवा अव्यक्त गणित नाम भी दिया है।
3: हमारे हिसाब से आचार्य श्री, आप पहले ऋषि हैं जिसने इन्हें गणित की दो पृथक शाखाएं माना है। इसी तरह आचार्य श्री, शून्य के उपयोग के नियम बनाने वाले भी आप पहले ऋषि हैं। जैसे आपने बताया, शून्य को किसी संख्या से घटाने या उसमें जमा करने से उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी तरह शून्य से किसी संख्या का गुणनफल भी शून्य होता है, पर किसी संख्या को शून्य से विभक्त करने पर उसका परिणाम अनंत होता है।
0: यद्यपि हमसे पूर्व भी आर्यभट्ट आदि अनेक महर्षियों ने वृहत संख्याएं लिखने में शून्य का उपयोग किया है, पर इसके उपयोग के नियम देने का प्रथम प्रयास तुम हमारा मान सकते हो।
3: आचार्य श्री, आप गणित की उस शाखा के भी संस्थापक माने जा सकते हैं जिसे संख्यात्मक विश्लेषण कहते हैं। आपने अपने ग्रंथ में अनिर्धारित समीकरणों, सरल समीकरणों तथा ज्यामितीय क्रमों को हल करने का तरीका भी बताया है।
0: वत्स, यहां हम तुम्हें बता दें कि हमने अपने दूसरे ग्रंथ करण खंड खंडायका में खगोल गणना के लिए बीज गणित का भरपूर उपयोग किया है।
3: वाह,
0: ये ग्रंथ भी खगोल गणना का ग्रंथ है। सही तो ये है, इन ग्रंथों में हमने सौर मंडल के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, गति तथा गणना संबंधी सूत्र दिए हैं।
3: अद्भुत अद्भुत। आचार्य श्री, आपने अपने द्वारा आविष्कारित अनेक खगोलीय यंत्रों, उपकरणों के निर्माण और उपयोग संबंधी जानकारी भी अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इस ग्रंथ में संकलित की है। इस ग्रंथ के 22वें अध्याय

0: धनुष यानी अर्धचक्र, तूर्य गोल चक्र, यष्टि यानी छड़ी, घटिका अर्थात जल घड़ी, कपाल, कर्तारी तथा पीठ आदि प्रमुख हैं। इन यंत्रों के अतिरिक्त आपने कुछ ऐसे यंत्रों के बारे में भी बताया है जो दिन भर चलते हैं या स्वतः ही निरंतर गतिशील बने रहते हैं।
1: हाँ वत्स, इनके उपयोग से ही हमने पृथ्वी के व्यास की गणना प्रस्तुत की है जो 1581 योजन आता है। वत्स, संभवतः तुम्हें स्मरण हो, सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये मान 1600 योजन प्राप्त होता है
0: साध,
1: पर हमारे मत में हमारे द्वारा प्रस्तुत गणना अधिक शुद्ध है। इन सब के अतिरिक्त और कोई बात जो तुम्हें विशिष्ट लगी हो?
0: इन विषयों के अतिरिक्त भी आचार्य श्री आपने अपने ग्रंथ में अनेक अन्य विषयों की चर्चा की है, जैसे सूर्य चंद्र और तारा ग्रहण के विषय में किए गए अनुसंधान, वर्गमूल, गोले का आयतन तथा अंतःगणन आदि विधियों का उल्लेख है, और फिर गुणत, और फिर गुरुत्व के विषय में की गई आपकी विशिष्ट टिप्पणी कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति है कि वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, जैसे कि जल अपनी प्रकृति के कारण ही बहता रहता है।
1: वत्स, सच तो ये है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यकलाप सतत एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित गणितीय नियमों में बंधे चलते हैं, यहां तक कि हमारा जीवन भी। अतः गणित का महत्व सर्वोपरि है, इसीलिए इसका विवेचन हमारे ग्रंथों में विशद रूप में हुआ है। अब शीघ्रता करो, हमें यज्ञशाला पहुंचना होगा।
0: यज्ञशाला?
1: हाँ वत्स, हम ऋषियों की प्रयोगशाला तो यज्ञशाला ही होती है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि ब्रह्मांडीय घटनाओं के लिए ही नहीं, धार्मिक जगत के लिए भी वैज्ञानिक प्रयोग महत्वपूर्ण है।
0: साध,
1: आखिर प्रयोगों की परख ही तो किसी तथ्य को प्रामाणिक बनाती है, इसीलिए हमारे ऋषि समुदाय में अनुसंधान को ऋषि अर्चन समझा जाता है। यहाँ गणित के समीकरणों के साथ जीवन विज्ञान पर भी गंभीर अनुसंधान किए गए हैं, और पदार्थ और चेतना दोनों एक साथ अनुसंधान का विषय बने।
0: महर्षि, अपने आश्रम का परिसर कितना सुरम्य और विस्तृत है। यहाँ विस्तीर्ण औषधि उद्यान, सघन अरण्य और ये विस्तृत कृषि क्षेत्र और छोटी बड़ी कई यज्ञशालाएं, सभी कुछ है। फिर अरण्य में मुक्त विहार करते हुए पशु पक्षियों का तो कहना ही क्या।
1: वत्स, औषधि उद्यान में जो विभिन्न प्रकार की औषधियां लगी हैं, उनका प्रयोग यज्ञ के अलग अलग वैज्ञानिक विधानों में किया जाता है। पास के सघन अरण्य में लगे विभिन्न प्रजापतियों के वृक्षों की काष्ठ संविधाएं यज्ञ के वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग में लाई जाती है।
0: साध, साध।
1: इसी तरह आश्रम के कृषि क्षेत्र में उगने वाली फसलों पर भी वैज्ञानिक प्रभावों का परीक्षण किया जाता है।
0: जी महेश।
1: फिर यहाँ उद्यान और अरण्य में विहार करने वाले पशु पक्षियों को भी यज्ञीय प्रयोगशाला का अभिन्न सदस्य माना जाता है, क्योंकि यज्ञ तो सभी के लिए है ना। लो, आ गए हम यज्ञशाला में।
0: महर्षि, आपके कथनानुसार तो हर यज्ञ एक प्रयोग है, है?
1: वत्स, प्रत्येक लोक हितकारी कर्म यज्ञ है। जिन कर्मों में स्वार्थ एवं अहम का तनिक भी कलुष नहीं होता, जो सर्वथा इदम न मम अर्थात ये मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, लोक हित के लिए है के भाव से प्रेरित व प्रवर्तित होते हैं, वे सभी कर्म यज्ञ हैं।
0: साध, साध। महर्षि, इस यज्ञशाला में विभिन्न आकार प्रकार और भांति भांति की माप वाले यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदियां, देखिए हम तो देख ही रहे हैं।
1: वत्स, ये सभी वेदियां ज्यामिति के सिद्धांतों पर बनाई गई।

0: हाँ जी,
1: हर विशिष्ट प्रयोग के लिए एक विशिष्ट आकार, प्रकार और विशिष्ट माप वाली यज्ञ वेदी का ही उपयोग किया जाता है। इसका अपना दर्शन है। लो, हम आ गए। इस विषय पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस
0: जी जी महाराज,
1: फिलहाल हमें वैदिक संध्या हवन संपादित करना है। आओ आओ वत्स, हम अपना स्थान ग्रहण करें।
0: पधारे महर्षि,
1: आओ
0: पधारे।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि ब्रह्मगुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की एक झलक। महर्षि ब्रह्मगुप्त के दो ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और करणखंड खंडायका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में सौर्यमंडल के ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति, गति और गणना संबंधी सूत्र दिए गए हैं। 7वीं-8वीं शताब्दी में इनका अनुवाद अरबी भाषा में हुआ, वहीं से ये मध्य एशिया, ग्रीस आदि देशों में पहुंचे। कई शताब्दियों तक ये ग्रंथ भारत और अरब में मानक संदर्भ ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित रहे।
1: और उनकी गणितीय देन?
0: बच्चों, महर्षि ब्रह्मगुप्त अनिर्धारित समीकरणों अर्थात इनडिटर्मिनेट इक्वेशन और संख्यात्मक विश्लेषण अर्थात न्यूमेरिकल एनालिसिस के संस्थापक माने जाते हैं। इसीलिए महर्षि भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने उन्हें कणक चक्र चूनामणि की उपाधि दी। एक बात और बच्चों।
1: वो क्या गुरुजी?
0: बच्चों, इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार महर्षि ब्रह्मगुप्त आदि बीज गणितज्ञों को यूनान के बीज गणितज्ञ डायोफेंड से अधिक विषय का ज्ञान था। ये महर्षि वर्ग समीकरणों के दो मूल मानते थे और उच्च घात के समीकरणों को हल कर सकते थे। अनिर्णीत समीकरणों का इन्हें इनके विशेषज्ञ माने जाने वाले डायोफेंड से अधिक ज्ञान था, क्योंकि डायोफेंड्स को केवल एक ही लब्ध फल प्राप्त हो सका था।
1: सच्ची गुरुजी?
0: ये सच है बच्चों। महर्षि ब्रह्मगुप्त आदि एलजेब्रा के ऐसे ऐसे प्रश्न हल करते थे जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के पहले तक यूरोप के गणितज्ञ नहीं कर पाते थे।
1: अच्छा गुरुजी?
0: हाँ बच्चों, इस महान गणितज्ञ का निधन 680 ईस्वी में हुआ था। इतना ही नहीं, महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के व्यास का जो मान दिया था वह आधुनिक वैज्ञानिक गणना से प्राप्त मान के लगभग बराबर है।
1: बराबर?
0: हाँ बच्चों, ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया मान 1581 योजन अर्थात 7905 मील होता है, जबकि सूर्य सिद्धांत और महर्षि भास्कराचार्य द्वारा परिकलित मान क्रमशः 1600 योजन और 1581 सही 1/24 योजन है। बच्चों, आधुनिक वैज्ञानिक गणना से प्राप्त मान 7918 मील है।
1: अरे वाह गुरुजी।
0: तो सब कुछ समझ में आया आज?
2: जी गुरुजी।
0: हाँ भाई, जो भी चीज आपको समझ में ना आए वो या तो आज स्कूल के बाद में, नहीं तो कल मुझसे पूछ सकते हैं।
2: जी गुरुजी।
0: अब गणित में खासकर एलजेब्रा से घबराओगे तो नहीं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी।
0: हाँ, कंचन ने जैसी आज मेहनत की ना, वैसी सब कल करके लाएंगे। ठीक है?
1: हाँ गुरुजी, और अगर इन लोगों को कुछ भी दिक्कत आई तो मैं इनकी जो दिक्कत है उसे हल कर दूंगी।
0: वाह भाई, लो घंटी भी बज गई।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

0: दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुईं। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही, और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 500 स्त्रियां जमा हैं, मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे, असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे, वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूं अच्छी हूं। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी, वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन? या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है आजकल तो, ये भी गनीमत है। नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब बीए में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुश फैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500। इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते। अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहां भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना, 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं, कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला, मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई। राम दुलारी जोर से हंस पड़ी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी, समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थिनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाहियां, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, चार पांच रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
1: तो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
0: हाँ, ये गलती तो हुई।
1: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
0: व्यंग्य बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार से टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में, कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए, मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं, जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी, बस मुझे पता था। पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसके चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए, जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं,
1: पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं, तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली? जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने यह किया उस बुड्ढे को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या द्वेष अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहां बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा जी। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
0: इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओं, आज भारत भारती कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी की सौंधी सी महक आपके लिए। जरा पहचानिए तो आपको हम किस ओर ले चल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है मिट्टी की सौंधी सी महक बघेलखंड की धरती से उठती हुई। भारत भारती के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, लोक संगीत यानी जन जन का संगीत, ऐसे गीत जो हमारी मिट्टी में रचे बसे हैं, सदियों से हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जीवन के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गीत है सोहर, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो आइए जीवन के उत्सव का ये गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों की आवाजों में।

बच्चे का जन्म हुआ और महिलाओं ने मिलकर गाया सोहर। जी हाँ, सोहर बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत है। वैसे बच्चे की बधाई तरह तरह से दी जाती है। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत तरह से मिठाइयाँ बांटकर बधाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बधाई गीत का एक अपना ही महत्व है। तो आइए वही बधाई गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद माँ के द्वारा कुआं के पूजन का विधान है। जी हाँ, सिर पर गगरी रख माँ कुएं तक जाती है और घर के सभी लोग उसके पीछे पीछे साथ में गाते बजाते पहुँचते हैं कुएं तक और उसका पूजन करते हैं। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं। स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पारंपरिक रचना।

बघेलखंड का लोक संगीत, जी हाँ, सरस, मीठा, मधुर। इस लोक संगीत में संस्कार गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। आइए कुछ शादी ब्याह से संबंधित गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में। भाई, दूल्हा तैयार हो चुका है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है और घर के लोग बारात लेकर निकलने की तैयारी में हैं। अब ये कि बनरा गाया जाएगा, जी हाँ, यही वो लोकगीत है जो इस अवसर पर गाया जाता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, लोक जीवन में कितनी अनुपम और सुंदर बातें होती हैं। जी हाँ, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो या तो कान्हा कहलाता है या राम, माँ कौशल्या हो जाती है या यशोदा कहलाती है। इसी तरह जब शादी के लिए तैयार होता है दूल्हा तो उसमें सभी लोग छवि देखते हैं भगवान श्री राम की, और ये बारात चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन हम अपने लोकगीतों में गाते हैं कि बारात चली जनकपुर को। अब जब बारात जनकपुर पहुंची तो भाई वहां स्वागत की तैयारी भी पूरी तरह से है, बारात द्वार पर है। अब उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो है गैलहाई। आइए सुनते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

द्वार पर बारात का स्वागत तो एक बात, लेकिन कुछ हंसी ठिठोली भी होती है। जी हाँ, एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरे से बातचीत में हम खुल जाएं, इस उद्देश्य को लेकर गारी भी गाई जाती है, कुछ छेड़छाड़, थोड़ा सा आमोद प्रमोद। आइए सुनते हैं द्वारचार की गारी, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के।

श्रोताओं, ये था दूर से बारात को देखना। जी हाँ, कभी छज्जे से तो कभी दीवार से लगे हुए एड़ियां उठाकर पूरे उत्साह के साथ और थोड़ी सी शरारत भी की गई, गारी गाई गई, बारातियों की थोड़ी सी खिंचाई की गई। जी हाँ, लेकिन अब बारात लग चुकी है द्वार पर, घराती और बाराती दोनों का ही उत्साह देखते ही बन रहा है। इस अवसर पर गाया जाता है बारात के स्वागत में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: घर में बिटिया की शादी है। कितनी ही भावनाएं मन में हिलोरें ले रही हैं। खुशी है कि बेटी सुहागन होगी, और वहीं बचपन से लेकर आज तक जुड़ी कितनी ही यादें बार बार आती हैं, मन को भिगा जाती हैं। कभी ये लगता है कि बिटिया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और कभी ये लगता है कि कितनी खुशी की बात है कि बारात द्वार पर आई है। और इन्हीं मनोभावों के बीच बेटी के अनंत सुहाग की कामना लिए गाया जा रहा है सुहाग। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।
1: मोरे के बोला चाह सुहाग गीत मवा प्रसंग है कि जौने घर में बिटिया कुमार होती, सबको सो जाती, सब सो जाती, लेकिन वह घर के प्राणी बाबा आजा काका उन्हें स्वामी उन्हें कितनी चिंता होती, वह चिंता का लेते हम अपना के सामने हाजिर हैं।

श्रोताओं, हंसी ठिठोली एक जगह, लेकिन बारातियों से बड़ा भला कौन मेहमान, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी भी पूरे जोर शोर से है। जी हाँ, नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और बेली जा रही हैं पूड़ियाँ। बारातियों को खिलाई जाएंगी ये पूड़ियाँ, और ये पूड़ी भी यूं ही थोड़ी बेली जाएगी, यहाँ भी तो कोई मंगल गीत होगा। जी हाँ, गांव भर की महिलाएं इकट्ठी हैं, बारातियों के लिए बेल रही हैं पूड़ी और इस अवसर पर खुशी के साथ मंगल गीत गा रही हैं, जिसे हम कहते हैं बेलनहाई। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बेलनहाई गाते हुए पूड़ियां तो बन गईं और अब समधी जी तैयार हैं जेवनार के लिए। और खाने के इस अवसर पर गारी तो होगी, लेकिन मर्यादित शब्दों में। और आपको पता है, बघेलखंड में नाम ले लेकर गारी देने का रिवाज है। और सबसे मजेदार बात ये कि अगर किसी का नाम न लिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, यानी गारी दी भी जाती है प्रेम से और ली भी जाती है प्रेम से।

0: जितने जने हमारी थोड़ी का सुना थे उनसे सबसे पूछी थी, कहा थे हमरे बघेल खंड में जाकर नाम लेके गाली ना गाई जाओ, बुरा मान जाके, बुरा बिल्कुल ना मानब। हम सबसे पूछी थी अपना पंचन के बगल से निकली 50,000 छोकरी।
1: कहो कैसे निकली?
2: आज जैसे बजे से तुम ना गाए से हारे।

और श्रोताओं, यूं ही गाते गुनगुनाते, हंसी ठिठोली करते, आमोद प्रमोद करते, खाते खिलाते, सभी रस्में होने लगीं और हर रस्म के साथ कोई न कोई लोकगीत जरूर जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये भंवरी, जिसके भाव बहुत ही करुण हैं। तो इसी भाव के साथ सुनिएगा मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बघेली संस्कार गीतों की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति ये लोकगीत, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

विवाह संपूर्ण हुआ और अब बेला आई विदाई की। मन भीग भीग जा रहा है। वो बिटिया जिसने इस आंगन में जन्म लिया, यहीं खेली कूदी बड़ी हुई, संस्कार पाए, माता पिता की लाड़ली, भाई बहनों की दुलारी, आज इस आंगन को छोड़कर चली जाएगी। कैसी कठिन घड़ी है कि माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विदाई गीत। कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

नमस्कार श्रोताओं, विदा होकर बिटिया आ गई अपने ससुराल। जी हाँ, ससुराल में खुशी का वातावरण, लोग प्रसन्न हैं कि गृह लक्ष्मी आ गई। और यहाँ भी तो घर की लक्ष्मी को घर में प्रवेश करवाने से पहले कितनी ही रस्में हैं। गृह लक्ष्मी का स्वागत हो रहा है परछन से, तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज थी महक बघेलखंड की माटी की। जी हाँ, आपने सुने कुछ बघेली लोकगीत और वहाँ के कुछ संस्कार गीत। हमारे आज के कलाकार थे मणिमाला सिंह और साथी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही संपन्न होता है भारत भारती का आज का अंक। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: अत्राते रूपमुत्तमपश्यम जिगीषमाणमिश आपदे गोह यदा ते मर्तो अनु भोगमानडा दिद्ग्रसिष्ठ ओषधी रजीगह। हे अश्व, आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम सूर्यमंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके बाद ही आपने हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। अनुत्वा रथो अनुमरियो अर्वन ननु गावोनु भगह कनीनाम अनुव्राता सस्तव सख्य मीयुरनु देवा ममिरे वीर्यन्ते। हे अर्वन, रथ आपके अनुगामी हैं। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौएं हैं। मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को प्राप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य को वर्णित किया है। हिरण्यशृंगोयो अस्य पादा मनोजवा इवर इंद्र आसीत देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्र देव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगवान हैं। देवताओं ने ही इसके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया। ईर्मान्तासः सिलिक मध्यमासः सम शूरणासो दिव्यासो अत्याह हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिशुर दिव्य मज्ममश्वाह। जब पुष्ट जंघाओं और वक्ष वाले मध्य भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। तव शरीरम पतयिष्ण वर्वन्तव चित्तम वात इव ध्रजीमान तव श्रृंगाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जरभुराणा चरन्ति। हे चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्व गमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियां वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। उपप्रागाच्छसनम वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः अजह पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात कवयो यंतिरे भाह। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व ऊपर की ओर देवमार्ग को जाता है। अज आगे चलता है, नाभि उसका अनुगमन करता है, पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं। उपप्रागात् परमं यत् सद्यस्थ मर्वा अच्छा पितरं मातरं च अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुसे वार्याणि। शक्तिशाली चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्माननीय माता पिता से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उत्पन्न करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

तुझा कारण हम ढूंढते और करते आस उम्मीद। अरे सो तो अं...

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम शांत गीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास बहुत सी जागीरें हैं जिन्हें आप अंग्रेजों को सौंपकर बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों की सारी शर्तें मानने के बाद भी आप अपनी जागीरें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप विजेताओं की दया पर होंगे और वो जो टुकड़े आपको देंगे आपको उसे स्वीकार करना होगा। बेहतर होगा कि आप लड़ें और शहीद हो जाएं, बजाय इसके कि आप गुलामों की तरह दयनीय जीवन जिएं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजों के सामने शेर सिंह अटारीवाला के समर्पण के बाद सिख सैन्य और राजनैतिक शक्ति को ये संदेश देने वाले महान सिख संत योद्धा थे भाई महाराज सिंह। भाई महाराज सिंह का जन्म 18वीं शताब्दी में लुधियाना के पास स्थित रबोन ऊंची गांव में हुआ था। उनका मूल नाम निहाल सिंह था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म और सेवा की ओर था। युवावस्था में उन्होंने नौरंगाबाद डेरे में काम किया। डेरे में काम करते हुए उनके भीतर के आध्यात्मिक भाव और अधिक समृद्ध हुए और यहीं से देश की राजनैतिक स्थिति को भी वो समझने लगे। डेरे में लंगर तैयार करने की जिम्मेदारी उनकी थी। अत्यंत सेवा भाव से वो इस कार्य को किया करते थे। जो भी वहां आता उन सभी को वो प्रेम और विनम्रता से महाराज जी कहकर संबोधित करते थे। धीरे धीरे लोगों ने ही उन्हें महाराज सिंह कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया। इस तरह वो भाई महाराज सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये वो समय था जब शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज के कारण पूरा पंजाब एकजुट था और अंग्रेज उनके साम्राज्य के आसपास भी फटक नहीं पाते थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का अचानक निधन हुआ और अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल आरंभ हो गई और उधर डोंगरा समाज के लोग भी कुटिल नीति अपनाने लगे। ऐसे समय में भाई महाराज सिंह ने सिखों को संगठित करना आरंभ किया। नाबालिग दिलीप सिंह के गद्दी पर बैठने के कारण सारा राजकाज हीरा सिंह संभाल रहे थे। डेरे में हो रही गतिविधियों को देखते हुए हीरा सिंह ने डेरे पर फौज से हमला करवा दिया। इस हमले में बाबा वीर सिंह शहीद हो गए और डेरे की बागडोर भाई महाराज सिंह को सौंप दी गई। वो लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को लामबंद करते रहे। अंग्रेजों की मंशा से वो सभी को अवगत कराते रहे। सन 1846 तक वो डेरे से ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे।

भाई महाराज सिंह अब नौरंगाबाद छोड़कर अमृतसर आ गए और लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करने लगे। उनकी पहली योजना थी कि सिख साम्राज्य के लाहौर दरबार के हेनरी लॉरेंस तथा कुछ और ब्रिटिश समर्थक सदस्यों को समाप्त किया जाए। ये प्रयास सन 1847 में किया गया, जिसे प्रेमा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 21 अप्रैल सन 1847 को इस घटना को अंजाम देना था, लेकिन अंग्रेजों को पहले ही इसकी सूचना मिल गई और पूरे पंजाब में दमन चक्र चला। लोगों की गिरफ्तारी आरंभ हुई, उनकी जायदाद जब्त करने के आदेश जारी किए गए। इसी समय भाई महाराज सिंह अंग्रेजों की नजर में आए। अंग्रेज गिरफ्तार किए गए लोगों से उनके विषय में पूछताछ करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। इन हालात में भाई महाराज सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। भाई महाराज सिंह की चर्चा अब हर जुबान पर थी। इस तरह पंजाब के लोगों के बीच वो अत्यंत लोकप्रिय हो गए। इनाम की घोषणा के बाद भी भाई महाराज सिंह रुके नहीं। उन्हें मुल्तान के दीवान मूलराज चोपड़ा द्वारा विद्रोह आरंभ करने की सूचना मिली तो उन्होंने भी अपनी विद्रोही गतिविधियां बढ़ा दी। हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। 400 घुड़सवारों की सेना लेकर वो मुल्तान के लिए रवाना हो गए। भाई महाराज सिंह के समर्थन से मूलराज की बगावत अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गई। विद्रोहियों के हौसले बुलंद थे। अंग्रेज भाई महाराज सिंह को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद उभरे और भाई महाराज सिंह के लौट आने के बाद मुल्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जून 1848 में भाई महाराज सिंह छतर सिंह अटारीवाला से मिले तथा अपनी ब्रिटिश विरोधी योजना के लिए उनसे सहायता मांगी। छतर सिंह पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह के शासनकाल में सिख साम्राज्य की सेना में एक सैन्य कमांडर थे। भाई महाराज सिंह अब अटारी वाले सरदारों के साथ थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया।

भाई महाराज सिंह ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1848 में उन्होंने शेर सिंह अटारीवाला के साथ रामनगर की लड़ाई में भाग लिया। युद्ध में वो स्वयं एक काले घोड़े पर सवार हुए और सेना में जोश भर दिया। सेना में उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने की भावना भर दी। चेलियावाला और गुजरात की लड़ाई में भी अपने काले घोड़े पर बैठकर उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। चेलियावाला में अंग्रेजों की हार हो गई। गुजरात की लड़ाई इस बगावत की अंतिम लड़ाई थी। सीमित साधनों की वजह से इसमें विद्रोहियों की हार हुई, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने माना कि ये लड़ाइयां सीधे सिखों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई थीं और इसका उद्देश्य केवल पंजाब नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों के प्रभाव को समाप्त करना था। गुजरात की लड़ाई के बाद भाई महाराज सिंह रावलपिंडी चले गए। रावलपिंडी में शेर सिंह अटारीवाला के समर्पण के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। सिखों को जगाते हुए उन्होंने आत्म बलिदान का संदेश दिया। सन 1849 में सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इन परिस्थितियों में भाई महाराज सिंह भिम्बेर अखनूर होते हुए देव बटाला चले गए। उन्होंने यहां फिर से संघर्ष शुरू किया। उन्होंने चंबी के पास रामनगर के किले पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। डोंगरों ने हमला किया तो वो जस्सोवाला आ गए। उन्होंने महाराजा दिलीप सिंह को भी अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त करने की योजना बनाई, लेकिन ये सूचना भी अंग्रेजों तक पहुंच गई और कई सरदार पकड़े गए। लेकिन भाई महाराज सिंह रुके नहीं, उन्होंने होशियारपुर और जलंधर की छावनियों पर हमले की योजना बनाई। लेकिन किसी भेदिये ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि वो आदमपुर और शाम चौरासी के बीच खेतों में छुपे हुए हैं। 28 दिसंबर सन 1849 को आदमपुर में अपने 21 साथियों के साथ वो गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें जलंधर जेल में रखा गया। जेल ले जाते समय रास्ते में हर सिख ने बड़े सम्मान के साथ सर झुकाकर उनका अभिनंदन किया। लोगों का ऐसा समर्थन उन्हें प्राप्त था कि परेशान अंग्रेजों ने उन्हें जलंधर से इलाहाबाद और फिर कलकत्ता जेल में रखा और कुछ महीनों बाद वो सिंगापुर जेल भेज दिए गए। वो भाग न जाएं इसलिए उन्हें जेल की ऊपरी मंजिल में रखा गया। खिड़कियां हमेशा बंद रखी जाती थीं और दिन रात जंजीरों से उन्हें बांध कर रखा जाता था। जेल की कठिनाई ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। तबीयत बिगड़ने लगी और 5 जुलाई 1856 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के लिए पल पल जीने वाले भाई महाराज सिंह अपनी मातृभूमि को याद करते हुए ही इस संसार से विदा हो गए। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म, बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में। टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते मैम।
2: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
4: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
2: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
4: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
2: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
4: जी,
2: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
4: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
2: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
4: जी।
2: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
4: जी,
2: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
4: जी,
2: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
4: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
2: जी,
4: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जबी से हुई।
2: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
4: जी,
2: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
4: जी,
2: यही कहा था आपसे,
4: जी,
2: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
4: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
2: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
4: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
2: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
4: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
2: क्या हुआ फिर?
4: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
2: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
4: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
2: जी।
4: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
2: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहे तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
4: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
2: जी।
4: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की, धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं और उनकी ये, हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आजादी है और ऐसी आजादी हमें भी चाहिए।
2: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आजादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
5: नमस्ते,
2: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रीति है।
2: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
5: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रहे कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस ये हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए और पापा शायद मदिरा पान कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
6: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
5: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
6: जी।
5: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
6: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे, ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना एलेक्स? आप भी तो, आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
4: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी। और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
6: में तब्दील हो गई,
4: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो, मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज, मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
6: लंबा रास्ता,
2: कठिन रास्ता
4: जी,
2: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
4: जी,
2: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहां से लौटना मुश्किल हो वहां जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
4: जी,
2: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
4: जी, बिल्कुल
2: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
4: जी,
2: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
5: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
2: बैठ जाते हो,
5: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
2: कोई तो सुने, पहली बात
5: कोई तो
2: बात
5: सुने, बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम है लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं अब इसका असर उन पर
6: देख ना जाए।
5: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया, जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
6: मेरा पैसा मैं
5: मेरा,
6: कुछ भी करूं।
5: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तो इतनी बड़ी हो गई है खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
6: हद में रहो,
5: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात
6: नहीं करूँगी,
5: मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
6: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफर हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे, और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बालसभा मुझे लगता है कि सिर्फ बालसभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो। है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल
6: आ सकता है।
4: जी जी,
6: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं, तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
2: आपने मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: जी सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
2: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों कमजोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
2: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जांपल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का नंबर आ गया।
1: बिल्कुल।
2: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं, मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जांपल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा, तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा। जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
1: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
2: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हो, उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं। भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स, उनका उपयोग हो।
1: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो बहुत सारों को डाला, कोई ना एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, गिबली ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी AI में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने AI सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी AI इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो एआई की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो एआई अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसर्न से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
1: अच्छा
2: पूरा डेटा आपने एआई को दे दिया,
1: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे। आपका तो उसने अभी बना के दे दिया एआई वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
2: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
2: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा। वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने जिसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया। उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा। वो रैंसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
1: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
2: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो, आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा।
1: ठीक है,
2: फिर उस आईडी की पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
1: ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं।
2: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं गएंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे। स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो। जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे, जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना। हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। वो क्लोज वालों के लिए था, लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
1: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
2: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसके किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं, जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे? वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले ही पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
1: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
2: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता।
1: अच्छा।
2: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा।
1: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है, सावधानी,
2: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
1: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
2: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
1: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
2: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
1: ठीक है,
2: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
1: कुछ नहीं, बस
2: नॉर्मली रहना चाहिए, कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो,
1: ओके,
2: तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
1: ठीक है,
2: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
1: ठीक,
2: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
1: आप ही थे कि नहीं थे। बिल्कुल।
2: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे तो आप तुरंत वहां पे लॉग कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूँ, इसको अपन हटा देते हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
1: बात ही नहीं, लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
2: ये जानकारी अब आपको बढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़ें, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है, क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई हैं, वो है एक डिजिटल अरेस्ट।
2: जी।
1: ये क्या चीज है, इसे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
2: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता है,
2: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज़्यादातर केसेस जो डिजिटल रिस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
1: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के, तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
2: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है, हाँ, और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है,
1: हाँ, हाँ,
2: तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है,
1: हाँ,
2: तो उसके चक्कर में
1: ऐसे में क्या करना चाहिए?
2: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, ऐसे में तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बन।
1: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपको, नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं, ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
2: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
1: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
2: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
1: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
2: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आए पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
1: जी जी जी,
2: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाए, मेरे को पैसे सेंड कर दो
1: जी।
2: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को फोन लगा के बोल दो आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
1: तो फिर इमोशनल ब्लैक कर ले एकदम तुरंत में, बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
2: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर लोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूंगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर अब कंट्रोल आया है।
1: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है,
2: एयरपोर्ट पे हो गया,
1: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
2: नेट मिल गया,
1: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
2: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
1: ठीक है,
2: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है,
2: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं, मैंने चूंकि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है, हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है, आप इसको यूज करो. उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को, जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को, एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो. वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी. जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था. सिर्फ मल सा इतना, मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें. तो जो दूसरा वाला था, ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो. अब क्योंकि मैं हूँ, मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल, AI से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें.
2: मैम, AI का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है, वो चल रहा है एक तो AI वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें XYZ की जरूरत है, कम से कम हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो. दूसरा है डीप फेक. डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर. वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं. वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर OTP ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया. लेकिन AI से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज 2-step वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट OTP या मेल यहाँ पे भी आएगा.

0: ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया।
1: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
0: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है।
1: अच्छा
0: पहले भले ही फ्री रेन थी, हाँ। अब वो फ्री रेन नहीं बची है
1: जी।
0: अब हर सरकार, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें,
1: right.
0: तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है।
1: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़ लें, आपके पर
0: कभी ना कभी तो फंसोगे। डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो, आपका हो, मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है।
1: बिल्कुल।
0: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
1: जी?
0: पॉजिटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है।
1: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उतनी ही सतर्कता, उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है। वास्तविक बने रहिए, कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें। ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें।
0: मैम मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी OTP या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, CVV हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे OTP मांगे, तो उसको OTP कभी ना दीजिए। सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है OTP का। आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का, वो बहुत कम हो जाता है। अगर आपसे कोई मांगता है, वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आपसे OTP मांगेगा ही नहीं। सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से OTP नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर कोई बाई चांस मांगता भी है, तो पहले तो आप उससे उसकी ID वगैरह ले लीजिए, फिर भी OTP ना दीजिए। ID की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन OTP ना दो
1: जी।
0: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये
1: नो मतलब नो। बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में, कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। हमारा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं हमारी भारतीय सेना से जुड़े हर उस पहलू को जिसे हम आम नागरिकों को जानना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, ताकि गर्व कर सकें हम अपनी भारतीय सेना पर, जिसके कारण आज हमारा राष्ट्र चारों दिशाओं से सुरक्षित है, महफूज है। श्रोताओं, राष्ट्र की संप्रभुता, सम्मान और सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेना के वीर सेनानियों के बलिदान और पराक्रम की गाथाओं से देश का इतिहास लिखा गया है और वर्तमान में भी, यानी आज जब हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये हम कभी ना भूलें कि सरहद पर 24 घंटे हमारी इन सांसों की निरंतरता के लिए कोई सैनिक चौकन्ना है, तैनात है। भारतीय सेना के इन्हीं वीर

0: चौकन्ने और मुस्तैद सिपाहियों की एक गौरव गाथा, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं या जिसे कारगिल युद्ध के रूप में पहचानते हैं, इसकी चर्चा कार्यक्रम में हम इन दिनों कर रहे हैं। श्रोताओं, कारगिल की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। ऊंचाई पर दुश्मन का बैठा होना, हमारी हर गतिविधि पर उसकी नजर होना, दुश्मन की संख्या क्या है, उनके पास हथियार किस तरह के हैं और कितने हैं, इसका सही अनुमान न लगा पाना, माइनस से भी कई डिग्री नीचे का तापमान, ऑक्सीजन की कमी और तीखी चढ़ाई पर बिना आड़ के दुश्मन की नजरों से बचते हुए रातों में इंच दर इंच आगे बढ़ना, ये सारी परिस्थितियां बेहद ही चुनौतीपूर्ण थी। फिर भी हमारे जाबाज सेना के वीरों ने बड़ी ही शौर्य और पराक्रम से कारगिल की उन चोटियों को वापस लिया और उन पर अपना तिरंगा फहराया। तोलोलिंग की लड़ाई, जिसका कि जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, उस पर फतह बेहद ही दुष्कर थी, लेकिन तोलोलिंग को वापस पाने के बाद इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट आया। आइए एक बार हम रुक करते हैं फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की ओर, जो स्टूडियो में एक बार फिर हमारे बीच हाजिर हैं कारगिल की गौरव गाथा को हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं।
0: जय हिंद सर।
1: पूर्वा जी
0: जी,
1: आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में
0: जी
1: जिस तरह से आपने वो बताया है
0: जी,
1: बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी
0: जी जी जी,
1: टेम्परेचर माइनस में, बिल्कुल सीधी चोटियां जो हैं, डोमिनेटिंग हाइट्स पे दुश्मन का होना
0: जी,
1: और उनका जो हमारी मूवमेंट में लगातार इंटरफेरेंस करना, एक तरह से मतलब बहुत ही दुष्कर ऑपरेशन था ये, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसमें जो सफलता मिली है वो सच में हमारे जांबाज बहादुर सिपाहियों का जोश था
0: जी, बिल्कुल सर।
1: और उनके अंदर एक जो अपने देश के लिए प्रेम था, देश प्रेम था
0: जी,
1: मैं कहूं तो एक तरह से देखा जाए तो वो सर पे कफन बांध के निकले थे
0: जी, बिल्कुल सर।
1: जिस तरह से उन्होंने ये किया है
0: जी जी,
1: हमने जैसे पिछली बार जिक्र किया था तोलोलिंग का
0: जी,
1: निसंदेह तोलोलिंग को कैप्चर करना बहुत बड़ी जीत थी
0: जी, बिल्कुल सर।
1: अभी जो है बहुत कुछ बाकी था,
0: मेरी जानकारी है सर, ये तो पहला स्टेप था।
1: एग्जैक्टली ये तो पहली हाइट थी जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हाइट थी, हमने जो है कैप्चर करी। टू राजीव जैसे हमने देखा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था
0: जी।
1: अब आगे जो है और भी जो लोकेशन थी जिसमें कि एनिमी बैठे हुए थे
0: जी,
1: पाकिस्तानी बैठे हुए थे और इंटरफेयर कर रहे थे, हमारे ऑपरेशंस में भी इंटरफेयर कर रहे थे
0: जी।
1: तो जैसे तोलोलिंग के ठीक पीछे एक हाइट थी जो नॉर्थ में
0: जी,
1: उसको हम 0.5140 बोलते हैं।
0: आपने जो नंबर बोला तो ये नंबर जो है उस चोटी की ऊंचाई को बताता है।
1: एग्जैक्टली ये उस चोटी की ऊंचाई को बताता है, उसके हिसाब से उसको हम नाम देते
0: जी,
1: हैं।
0: उसी नाम से पुकारने
1: जी, उसी नाम से पुकारते हैं
0: जी।
1: तो ये जो हाइट थी मतलब तोलोलिंग से भी ऊपर ऊपर है। एंड अगेन ये भी काफी बड़ा फीचर था, दुश्मन ने जो है इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से अगेन वो डोमिनेटिंग हाइट पे था। तो तोलोलिंग को अगर हमको बरकरार रखना है तो इसको कैप्चर करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और आप ये समझ सकती हैं कि इतना मैसिव फीचर था कि उसके लिए एक बटालियन नहीं, तीन बटालियन है, पूरी ब्रिगेड का लेवल का एक अटैक किया गया
0: जी, जी।
1: उस फीचर पे जो है तीनों तरफ से, तीन दिशाओं से जो एक साथ अटैक किया, और उस अटैक में मतलब जो है पूरा जो डिवीजन था उसकी जितनी आर्टिलरी होती है मतलब और मोटर फायर होता है उसके सपोर्ट था। इंडियन एयरफोर्स ने जो है उससे पहले जो है टारगेट्स के ऊपर जो है बम्बार्डिंग करी थी और पूरा जो है फोर्स लगा था
0: जी।
1: और उसका कारण यह है कि ये इतने मैसिव फीचर्स होते हैं और इसमें आपको स्टीप क्लाइम करके ऊपर जाना है, तो ये जरूरी है कि उससे पहले हमें ये फायर सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जो मैसिव फीचर था इसके लिए बहुत बहादुरी से हमारे सिपाही लड़े, इंच इंच करके आगे बढ़े, तीनों तरफ से जो है डायरेक्शन से अटैक आया। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे जो 13 जैकरिफ बटालियन थी उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे, ये नाम आप बहुत अच्छे से जानती हैं,
0: बेहद मशहूर है सर।
1: जी, ही वाज एक्सेप्शनली ब्रेव ऑफिसर जो फ्रंट से लीड करके इनिशिएटिव लेके हमेशा आगे जाते थे। तो ही एक्चुअली शोड एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन दिस अटैक बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने जो है जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया गया था उस पे कैप्चर करते समय दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे एंड जितने वहाँ सोल्जर्स थे उन्होंने काफी डेयर डेविल अटैक में काफी सोल्जर्स को हैंड टू हैंड फाइट में मतलब जो है खत्म किया था और उस पोजीशन को कैप्चर किया था। तो कहते हैं कि कैप्चरिंग के बाद जब अपने उसी हिसाब से वो बात कर रहे थे तो बड़ा
0: मशहूर जुमला है सर वो दिल मांगे
1: या बिल्कुल सही बोला आपने। आप सोचिए एक यंग कैप्टन उसका उनमें कितना जोश था
0: सर। वो तो शेरशाह कहलाते थे।
1: वो शेरशाह कहलाते थे सच में वो शेरशाह थे
0: जी।
1: और इस जुमले ने और उसके बाद जब इंटरव्यू में भी उन्होंने यही एक्सप्रेस किया था कि मैं जब तक इनको निकाल नहीं दूंगा मतलब जो है मुझे मेरा दिल तो हमेशा मांगता रहेगा कि हर मेरे को ऑब्जेक्ट लेना है ऑब्जेक्टिव लेना है। ये बिकेम ए हाउस होल्ड नेम अक्रॉस द कंट्री।
0: बच्चा बच्चा जानता है सर
1: जी। उसके बाद ये और जितने और सोल्जर्स थे बटालियंस थी उन सब ने मिलके जो है फाइनली ये जो 0.5140 पे आखिरकार 20 जून को कैप्चर किया कब्जा किया जो है। ये जब कब्जा होता है उसमें क्या होता है आप ये देखिए कि जो मैसिव फीचर होते हैं जैसे वो एक चोटी के ऊपर ही दुश्मन नहीं होता है वो उसके आसपास छोटे छोटे
0: बिखरे
1: पोस्ट बनाई हुई होती है तो एक एक करके जो है इनको कैप्चर करा जाता है कैप्चर करके आगे बढ़ा जाता है और हर स्टेप के ऊपर आपको एक नई लड़ाई लड़नी होती है। हर स्टेप के ऊपर नया चैलेंज होता है। आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊपर से फिर फायर आ रहा है उस बीच में रसद भी आ रही है एमिनेशन भी आ रहा है पीछे से आपके साथियों कैजुअल्टी हो रहे हैं ठीक है उनको आप इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके साथ जो लड़ रहा होता है सडनली यू फाइंड कि ही इज डेड। इट इज अ वेरी मतलब मेजर इंपैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी एंड यू हैव टू रियली कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट टाइम कि अभी 2 मिनट पहले था और अभी नहीं रहा
0: नहीं।
1: और उससे भी ज्यादा दुख होता है जबकि उसको गोली लगी हुई है और आपको उसको इवैक्यूएट भी करना है और सामने दुश्मन से भी लड़ना है। और ये इस युद्ध में सबसे ज्यादा था उसका कारण जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दुश्मन को हम दिख रहे थे
0: वो हमसे ऊपर बैठे हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे
1: हम उन्हें इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे थे जितना कि वो हमको देख रहा था एंड उसको हाइट डोमिनेटिंग हाइट्स पे होने का एडवांटेज था। दैट्स व्हाई ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं एंड हम उन हर सोल्जर की कुर्बानी के लिए उसके सामने नतमस्तक होते हैं।
0: बिल्कुल सर नमन है हम सब
1: जी नमन है जिन्होंने सर में सच में कफन बांध के जो है लड़ाई लड़ी
0: जी बिल्कुल सर।
1: और उनके दिल में क्या होता होगा कि दिल में कितना देश प्रेम था उन्होंने कि हमारे यहाँ पे आपने घुसपैठ किया है हम आपको नहीं रहने देंगे और उसको निकाला।
0: बिल्कुल सर।
1: तो मैं तो एक एक सोल्जर जो है जो भी रहे उनको सबको जो है सैल्यूट है हमारी तरफ से। इसी तरह से अभी हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अदर फीचर जो बहुत फेमस हुआ था आपको याद होगा टाइगर हिल
0: जी।
1: अब टाइगर हिल जो है इट्स अ मैसिव फीचर जो कि उसके आसपास की जितनी पहाड़ियां अगर आप फोटो देखेंगे आपको दिखेगा बिल्कुल अलग से नजर आता है बिल्कुल
0: सबसे ऊंची चोटी
1: बिल्कुल अलग से दिखती है और बहुत बड़ी है मतलब 2.2 किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर फैली हुई ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ टू साउथ में। और ये जो है मतलब NH1 alpha जो हमारा जाता है तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर जो है नॉर्थ में थी और वो मतलब जो चोटी है वो पूरा का पूरा NH1 alpha उस समय जो इसको डोमिनेट करती जो श्रीनगर ले रोड है उसको डोमिनेट कर रही थी
0: जी। और सर मैंने सुना कि दुश्मन के पास ऐसे हथियार थे जो 7-8 किलोमीटर दूर हमारे नेशनल हाईवे पर वो बम्बार्डिंग कर सकते थे
1: जी। उसमें क्या होता है यहाँ पे आर्टिलरी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से जो है पीछे अपनी जो आर्टी गन्स होती है उसका फायर लेकर आते हैं
0: जी।
1: तो ऑब्जर्वेशन क्योंकि इनको क्लियर था तो इस कारण से आर्टी फायर लाने में उनको बहुत मदद मिल रही थी जो कि हमारी पूरी व्हीकल मूवमेंट थी उसमें इंटरफेरेंस होता था क्योंकि लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही होती थी तो मूवमेंट नहीं हो पाता था। और इस फीचर पे जो है कहते हैं पाकिस्तान आर्मी की नदन लाइट इन्फेंट्री थी बटालियन थी उसकी पूरी कंपनी की स्ट्रेंथ थी तैनात थी
0: जी।
1: अब अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि टॉप पे सब बैठे हों मिलजुल के वो अलग अलग जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं जहां से दुश्मन के आने का मतलब खतरा है मतलब अगर हम डिफेंस के हिसाब से देखें तो वो हर जगह पे मतलब छोटी छोटी पोस्ट बना के बैठे होते हैं फैले होते हैं तो आपको जब वहां तक पहुंचना है उसको कैप्चर करना है तो आपको एक नहीं अनेकों लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं हर तरफ से मतलब जो है एक आप पोस्ट कैप्चर करते हैं फिर उसको कैप्चर करने के बाद उसको फुटहोल्ड बना के दूसरी पोस्ट आगे बढ़ के कैप्चर करते हैं तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे ऑपरेशन होते हैं। माउंटेन्स में समय बहुत लगता है ये जो है अगेन इट वाज अ मैसिव फीचर, और तब तक जो है टीवी ने भी इसमें मतलब न्यूज सीरियल में मतलब तकरीबन सब लोगों ने देखा था,
0: था
1: तो एक बड़ा डिस्कशन था कि इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या ये कैप्चर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक ये भी था कि ये तो भाई इतना मतलब मैसिव फीचर है कि इस पे बहुत मुश्किल है, असंभव सा काम है कि इसको जो है आप मतलब कैसे कर पाएंगे, बट फाइनली तो हमने कैप्चर किया। और इसके लिए जो बटालियन थी 18 ग्रेनेडियर्स और 8 जो थी उनके साथ आर्टिलरी थी, इंजीनियर्स थे, एक हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, तो वहां से जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं वो लोग माउंटेन्स में
0: पहाड़ों पर
1: लड़ाई करने के लिए, तो उसके भी जो है स्पेशल टीम्स आई हुई थी इसके लिए। जब अटैक हमने 3 जुलाई को 18 ग्रेनेड से शुरू किया था, उससे पहले जो है मैसिव आर्टिलरी बम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर, IAF जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने स्ट्राइक्स करी थी, मिसाइल अटैक्स हुए थे, क्योंकि नहीं तो आप उस ऑब्जेक्टिव तक तो पहुंचना
0: तो बहुत भटकाने के लिए भी बहुत जरूरी था ताकि
1: उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है, उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है। एक तो वो हमारे इलाके में घुसा हुआ है, मतलब हर तरह से हमारा हक है कि हम अपना इलाका हमारे घर में घुसा है तो हम उनको निकालने के लिए कुछ भी कर सकते,
0: किसी भी कीमत पर जा सकते।
1: बिल्कुल, इसमें भी अगेन जो है मल्टी डायरेक्शनल अटैक लॉन्च करे जो है, और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया वही सेम मतलब जो है स्टीप क्लाइम्स है, बहुत रगेड टेरेन है, इंटेंस फायर आ रहा है दुश्मन का डोमिनेटिंग पोजीशन से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक एक पोस्ट को क्लियर करते हुए जा रहे थे। एंड अगेन देखिए आप, इट इज नॉट कि ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई है, घंटों लग जाते थे, रात से दिन हो जाता था, दिन होते थे तो मतलब जो है आप एक्सपोज होते थे, दुश्मन आपको देख रहा होता था। जो हमारे जवान हैं उनका मोटिवेशन देखिए कि वो भूखे प्यासे होते थे, ठंड में पड़े होते थे, उसके बावजूद जो है ना तो कभी उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, जहां तक वो आगे बढ़ गए वो फिर पीछे नहीं आए, कहीं पे भी वो पीछे नहीं आए।
0: सर मुझे तो ये सुनने में आया है कि वो अपने साथ अपना राशन ले जाने के बजाय गोलियां ले जाना ज्यादा प्रेफर करते थे, ताकि क्योंकि ऊपर चढ़ाई बहुत मुश्किल है।
1: बिल्कुल, खाना खाने का तो पता नहीं लेकिन गोली होना जरूरी है।
0: बिल्कुल सर,
1: क्योंकि अगर लड़ना है तो गोलियां जरूरी है और वही उस समय हमको बचा सकती है जो है। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो फाइनली जो है टीम ग्रेनेडियर्स दे रियली डिड अ वंडरफुल जॉब एंड 4 जुलाई को दे अचीव्ड अ मेजर सक्सेस होल्डिंग दिस, ठीक है, ओके ग्राउंड उन्होंने जो है इसको कैप्चर किया
0: जी।
1: है। अब ये था कि इसको कैप्चर करने के बाद जो दुश्मन था उन्होंने लगातार काउंटर अटैक किए
0: वापस पाने के लिए।
1: तो इसमें भी जो है मतलब ये बटालियन जो है अपने इनके जो जवान है तो लड़ते रहे, कंटिन्यूअसली लड़ते रहे, उस जगह को
0: छोड़ा नहीं।
1: एक बार आया तो नहीं छोड़ा। यहाँ पे अपन जिक्र करते हैं मतलब ये जो अटैक हुआ था इसमें अगर आपको याद होगा उस समय जो ग्रेनेडियर्स थे योगेंद्र सिंह यादव
0: ऑनरेरी
1: कैप्टन जिन्होंने की बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाई दिखाया इस अटैक में, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: वो क्या था कि जब ये अटैक हो रहा था तो हमारी घातक प्लाटून होती है, घातक प्लाटून मतलब इट्स लाइक ए कमांडो प्लाटून जो बटालियन में होती है, छोटी सी होती है जिसके की लोग बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं, ट्रेंड होते हैं। वो जनरली क्या करते हैं कि ये ऐसे दुर्गम इलाकों में उनको डिप्लॉय किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। तो जो योगेंद्र सिंह जी थे वो इस घातक प्लाटून के मेंबर थे, वो इसका हिस्सा थे, तो जिसका काम दिया गया था कि टाइगर हिल टॉप पे आपको जाके कैप्चर करना है, क्योंकि स्टीप क्लाइम था तो इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा सबसे आगे और जो है रस्सी ले जाके उसको फिक्स भी करूंगा। तो इन्होंने जो है वॉलंटियर करके आगे बढ़े और फिक्स करते हुए रो फिक्स करते रहे क्योंकि बहुत स्टीप था, जिसकी मदद से जो बाकी टीम भी ऊपर चढ़ती गई। तो जैसे ही टॉप पे पहुंचे हैं दुश्मन को भनक लग गई कि मनक लगी तो उन्होंने देखा तो उनको दिखा और उन्होंने बहुत जो है हैवी इंटेंस फायरिंग इनके ऊपर शुरू करी। इतनी इंटेंस थी कि जो टीम लीडर थे और साथ में जो 2 सोल्जर और थे घातक प्लाटून के वो वहीं शहीद हो गए। इतना फायर आ रहा था तो उसके कारण जो है मूवमेंट स्टॉल हो गया एक तरह से। तो फिर से जो है योगेंद्र सिंह ने मतलब ही टुक द इनिशिएटिव, धीरे धीरे क्राउल करते हुए आगे गए और जो दुश्मन का जो संगर था उस पर उन्होंने अटैक किया और वहां पे जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स थे तो उन्होंने लगातार उनको फायरिंग करके एंड उनके साथ लड़ते हुए ऑलमोस्ट ही किल्ड एवरी वन ऑफ देम, चार पांच जो थे
0: जी।
1: अब इनके जो एक्शन से क्या हुआ कि वो जो मशीन गन फायर हो रही थी वो शांत
0: वो बंद हो गई
1: तो जब वो बंद हुई तो बाकी जो टीम थी उनको मौका मिला तो उन्होंने भी आगे बढ़ के एंड बाकी जो बंकर्स संघर्ष जो थे उसके ऊपर जो है उन्होंने अटैक करा अटैक किया एंड फाइनली द टीम सक्सीडेड, द प्लाटून सक्सीडेड और जो है इन्होंने टाइगर टॉप पे कब्जा किया था। अब इसमें जो है योगेंद्र सिंह जी को काफी खुद को भी बुलेट इंजरीज हुई थी,
0: मैंने सुना 15 बुलेट्स थी
1: जी उनको, काफी मतलब जो है दानाद में गोलियां लगी थी। लेकिन देखिए फिर भी उनका आप हौसला देखिए
0: जी जी,
1: इतनी बुलेट लगी हैं ना तो वो पीछे हटे ना उन्होंने इवैक्यूएशन होने का वो किया कुछ भी किया, लेकिन वो लड़ते रहे वहां पे जो है
0: जी।
1: एंड राइटफुली फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी इनिशिएटिव एंड करेज, ठीक है, ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द कंट्री, परमवीर चक्र उनको मिला
0: जी।
1: और ये आप अगर देखें कि हर एक जो सोल्जर था जो गया है 18 ग्रेनेडियर्स के, हर सोल्जर्स ने अपने जो है पूरी बहादुरी और जांबाजी से अपना कार्य किया था। हाँ ये जरूर है कि उसमें कुछ जो हटके इन्होंने किया वो बहुत ही ज्यादा था
0: जी, ये तो बिल्कुल असाधारण काम,
1: असाधारण काम,
0: ये हम सोच ही नहीं सकते ना कि एक मनुष्य होकर इतना जज्बा रख लेना 15 गोलियां खाने के बाद भी
1: जी
0: अपनी बहादुरी पूरी की तरह से देश प्रेम के लिए बिल्कुल उड़ेल के रख देना सर।
1: और इनिशिएटिव देखिए आप कि मैं आगे जाऊंगा,
0: हाँ जी
1: मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के बाद जो है मैं ये कार्य करूंगा
0: जी,
1: तो राइटफुली मतलब एंड ही इज ऑनरेडी कैप्टन जो है और ही डिजर्व्स अ रियल सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस,
0: असली कारगिल हीरो हैं सर
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर हिल तो इन्होंने लिया जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उसके आसपास भी जो पोस्ट थी अब वो उनसे इंटरफेरेंस हो रहा था, तो वहां से भी फायरिंग कर रहा था, तो उनकी जो बाकी पोस्ट थी जहां से कि उनकी रसद भी सप्लाई हो रही थी और जहां से उनका रीइंफोर्समेंट भी आ रहा था उसको रोकना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए जो 86 बटालियन थी साथ में उनको टास्क दिया गया। अब अगेन वहां से उन्होंने जो है अटैक करके जो बाकी जो पोस्ट थी उनको कैप्चर किया। अगेन मैंने तो एक लाइन में बोल दिया है
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: सच में यकीन मानिए एक लाइन का एक सेकंड का काम नहीं था,
0: बहुत दुष्कर है,
1: बहुत ही दुष्कर थे जो है इस पे चढ़ना। अगेन मतलब जो है इट्स एक्चुअली नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड डिटरमिनेशन, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन होते हैं वो जो है वहां पे उसी को समझ में आता है एंड उनको काफी कैजुअलिटीज भी हुई इनकी जो है, बट वो अगेन दे वर एबल टू कैप्चर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू देम। उसके बाद दुश्मन ने काफी मेजर काउंटर अटैक्स भी किए रिगेन करने के लिए, लेकिन ये जो सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे सिख के वो अपनी पोस्ट पे डटे रहे एंड उन्होंने तो एक इंच भी जमीन वापस नहीं करी, जो ले लिया वो तो फिर हमारा है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी, है ना। तो ये जो मैसिव फीचर था इसको जो हमने कैप्चर किया था
0: जी,
1: तो इट वाज एक्चुअली सच ए बिग सक्सेस फॉर द आर्म फोर्सेस कि इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन,
0: ठीक है, बिल्कुल सर,
1: इनफैक्ट एवरीबडी सेलिब्रेटेड इट, ठीक है, एंड इट वाज ए मेजर लॉस टू पाकिस्तान, ठीक है, इट वाज ए मेजर ब्लो टू देम, ठीक है, ओके। अच्छा पाकिस्तान का तो ये हाल था कि वो ये मानने से भी इनकार कर रहा था कि कोई टाइगर हिल नाम की फीचर है या उनकी आर्मी वहां पे है
0: मौजूद
1: है, जो है तो 8 जुलाई को हमारा तिरंगा
0: 18
1: ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पे लहराया एंड वाज अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। एंड ये जो विक्ट्री थी इससे काफी कुछ जो है हमें सक्सेस मिली और द्रास सेक्टर में जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया। वो जो मेजर पोर्शन था तोलोलिंग टाइगर हिल और उसके बाद ये जो
0: जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे खतरे में था,
1: काफी बड़ा हिस्सा जो है हमने चेक किया।
0: सर यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो द्रास क्षेत्र है उसके अलावा भी कोई ऐसी जगह थी जहाँ से दुश्मन हमारे यहाँ घुस आए थे और वहाँ भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी?
1: जी हाँ बिल्कुल, द्रास तो एक सेक्टर था बीच में
0: जी,
1: अगर आप देखें तो उसके वेस्ट में, यानी कि द्रास और जोजिला के पास है के बीच में मशको वैली आती है, वहां पे भी इन्होंने जो है पाकिस्तानियों ने घुसपैठ करी थी।
0: अच्छा।
1: और ये तकरीबन NH1 अल्फा जो रोड है उसका 30 किलोमीटर तक का जो एरिया था
0: जी,
1: उस पे वो डोमिनेट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसमें वहां पे भी उन्होंने कुछ मेजर हाइट्स थी जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था।
0: अच्छा।
1: और अगर हम द्रास के आगे मतलब सियाचिन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, कारगिल से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए द्रास आता है, द्रास का कारगिल आता है, फिर उसके बाद आगे जो है चोरबाटला बटालिक सेक्टर आता है, तो वहां पे भी घुसपैठ इन्होंने करी थी और वहां पे भी जो है इन्होंने कुछ हाइट्स वगैरह थी जिन पे कैप्चर किया हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो अब एक एक करके जो है और कई जगह एक साथ जो है हर जगह जो है इंडियन आर्मी लड़ रही थी और इनको वहां से निकाल रही थी,
0: खदेड़ रही थी
1: पीछे हटा रही थी। अभी क्या हो रहा है कि जब हम अपने एपिसोड्स में जो जिक्र करते हैं हमने कुछ खास जगह के बारे में ही हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन और भी जो है काफी जगह है और काफी सारी बटालियंस भी थी। अभी हमारे सामने तो कुछ ही बटालियंस का नाम आता है जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने हम आप यकीन मानी जितनी हम बात कर रहे हैं उससे कम से कम नहीं तो 3 से 4 गुना ज्यादा फोर्सेस थी सिर्फ इन्फेंट्री की।
0: जी सर, ऐसा बोला जाता है ना कि यदि हम युद्ध लड़ते हैं और हमें जीतना है तो 1:3 का रेशियो होना चाहिए।
1: का माउंटेंस में तो होना ही होता है,
0: पहाड़ी पर हो जाती है ये चीज तो 1:15 तक चले जाते हैं।
1: यू आर राइट, डिपेंड करता है। देखिए ना, अभी हमने जिक्र किया था टाइगर हिल का, तो उसमें जो है एक कंपनी के अगेंस्ट 3 बटालियंस गई थी। काफी आप सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोला।
0: एक प्रश्न और भी मेरे मन में आता है सर, ये हम एपिसोड इसको समअप करें इसके पहले, कि तोप का उपयोग इस युद्ध में, कारगिल युद्ध में विशेष रूप से बहुत अधिक हुआ और मतलब सदुपयोग किया गया उसका, तोप का और चर्चित नाम बोफोर्स का उपयोग, क्या पहली बार हुआ है इस तोप का उपयोग?
1: नहीं, ये तो देखिए बोफोर्स तो हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें एक जो बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी थी वो था डायरेक्ट फायरिंग में। से क्या होता है, जब आर्टिलरी फायर होता है इट इज अ पैराबोलिक, जो दूर जाके जो गिरता है। इसमें क्या हुआ था कि हमें जो सामने दिख रहा था बंकर, जो संगर दिख रहे थे, उसमें मतलब आर्टिलरी शेलिंग इस तरह से हुई थी कि ये डायरेक्ट फायर किया था।
0: अच्छा।
1: तो ये एक अलग तरह से उपयोग था। दूसरा, इसमें जो है काफी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था जो फायरिंग में, बहुत सारी गन्स वगैरह का एक साथ इस्तेमाल हुआ था, तो उसका जो इम्पैक्ट था हमें समझ में आया था कि आर्टिलरी कितना मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो वो एक हम लोग को एक लेसन सीखने को मिला था। यू आर राइट, इसके कारण जो है बोफोर्स काफी उसका नाम आया था।
0: हाँ, जी, बहुत चर्चित हुआ था,
1: बहुत चर्चित हुआ था, एंड इट इज अ वेरी गुड गन।
0: सर, सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग बात ये लगती थी कि इन तोपों को वहां तक ले जाना, युद्ध भूमि तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती था।
1: जी वो तो है। दूसरा क्या होता है कि जब आप फायर होता है, आर्टिलरी फायर होता है, तो उसकी जो लोकेशन होती है गन की वो इमीडिएटली दुश्मन पता कर लेता है।
0: हाँ, जी,
1: तो उसके लिए क्या होता है कि इमीडिएटली गन्स को मूव करना होता है क्योंकि काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा
0: आपके ऊपर,
1: दोबारा अटैक होगा। तो उसके लिए ये जो गन्स होती है फोर्स, क्योंकि इनके पास मोबिलिटी है, ये भी एक कारण था कि उसके कारण काफी ये
0: सफल रही हैं
1: क्योंकि इनके पास अपना जो है कैपेबिलिटी होती है मूवमेंट की होती है, तो फायर करने के बाद
0: एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
1: दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस गन।
0: तो सर, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम आम इंसान इन सब चीजों को जान सके। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, युद्ध जीतना और तिरंगा फहराना तो हमने देखा है टीवी पर और सब, लेकिन इसके पीछे जो एक कहानी है, जो एक गौरव है, जो एक पराक्रम है, उसी को हम उजागर करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम से।
1: बहुत ही अच्छा बोला आपने, जैसे सिर्फ जो लड़ रहे हैं
0: जी
1: उनके साथ एक बहुत एक इंसान होता है जो पोर्टर्स होते हैं, सिविल पोर्टर्स होते हैं, जो एमिनेशन कैरी करते हैं, राशन कैरी करते हैं, वो वहाँ के लद्दाख के लोकल्स होते हैं,
0: उनका भी उतना ही बड़ा योगदान,
1: उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो अगर एमिनेशन लेके जाना, रसद लेके जाना और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में मदद करना, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो उसी तरह से बाकी जो है इसमें इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स है, कम्युनिकेशंस डेवलप करना है, ऑर्डिनेंस का काम है, एमिनेशन सप्लाई करना है, राशन सप्लाई करना है, तो इट इज अ वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ जॉब।
0: सबका समन्वय है
1: तो ईच एंड एवरी वन मतलब जिन्होंने काम किया इसके लिए वो सभी तारीफ के काबिल हैं।
0: ऑपरेशन विजय जो है इन्हीं की विजय है।
1: बिल्कुल इनकी विजय है, 100% इनकी विजय है।
0: तो श्रोताओं, ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहाँ हर परिस्थिति हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन युद्ध का परिणाम दुश्मन के पक्ष में नहीं रहा। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के पराक्रम का परचम एक बार फिर बुलंद किया, जो शुरू हुआ था छल कपट और विश्वासघात की बुनियाद पर, लेकिन खत्म हुआ भारतीय सेना के वीरता, विश्वास और विजय के साथ। ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की जंग नहीं थी, ये जंग थी देश के अभिमान की, स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की। ये जंग थी दुश्मन को उसकी हदें बताने की, हमारी सरहदों की रक्षा की। इस युद्ध की बातें आगे भी जारी रहेंगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। धन्यवाद सर इस कार्यक्रम के लिए।
1: जय हिंद पूर्वा, जय हिंद श्रोताओं।
0: जय हिंद सर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मेरे साथ थे लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सेवानिवृत्त, जो हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे थे, और मैं थी आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप?
2: दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
3: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
2: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
3: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
2: ओके दादाजी।
3: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
3: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
2: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
3: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
2: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना?
3: हाँ?
2: तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
3: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
2: वो तो है दादाजी।
3: हाँ, वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
2: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
2: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
3: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
2: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में।
3: पूछो।
2: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
3: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
2: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
3: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
2: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
3: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
2: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
3: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
2: कैसा सपना दादाजी?
3: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
2: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
2: दादाजी, क्या 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
3: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
2: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
2: दादाजी, अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू, अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
3: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
2: हाँ दादू।
3: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है, ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
2: दादू दादू दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
3: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
2: अब समझी। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
3: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
2: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
3: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है। ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
2: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
3: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
2: वो तो है।
3: हाँ बेटा, देखो आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
2: दादू, मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
3: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
2: अच्छा।
3: हाँ।
2: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइलों से खोजती कैसे होगी?
3: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
2: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
3: बिल्कुल वैसा ही।
2: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
3: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
2: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
3: हाँ हाँ,
2: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
3: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
2: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
3: हाँ
2: दादू, ये किस तरह की तकनीक है?
3: इसका मतलब है कि बेटा, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
2: दादू, ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
3: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
2: अच्छा,
3: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
2: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू, समुद्र में क्या होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
2: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
3: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
2: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
3: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
2: अच्छा?
3: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
2: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
2: दादू, ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
3: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
2: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
3: नहीं नहीं बेटा, भारत को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
2: अच्छा?
3: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
2: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
3: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
2: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
3: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
2: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
2: रोबोट? सचमुच?
3: हाँ हाँ, आज BDL अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
2: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था। क्या इसका भी BDL से कोई संबंध है?
3: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। BDL भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा रहा है बेटा।
2: दादू, आजकल AI की भी तो बहुत चर्चा होती है ना? क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
3: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब AI आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। AI की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
2: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
3: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
2: दादू, आपने पहले IDEX का नाम लिया था।
3: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
2: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
3: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने, कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
2: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
3: लाभ ही लाभ है बेटा, विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
2: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
3: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
2: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
3: अच्छा,
2: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
2: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
3: हाँ,
2: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
3: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
2: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
3: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया। याद रखो, हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था, और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
2: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
3: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती,
4: बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
2: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
4: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
2: ओ दादू, आपका बस चले ना तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
4: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
2: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
4: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
2: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
4: हाँ बेटा।
5: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
4: और दीपक नेमा
5: को दीजिए आज्ञा।
4: नमस्कार।
5: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। तुलकर्ष

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इतिहास का नमस्कार
1: और साथ ही तारीख का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रोताओं।
0: तारीख, आज आप किस बलिदानी की कहानी लेकर आई हैं?
1: इतिहास आजाद हिंद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतिहास और तारीख दोनों मिलकर किसी न किसी क्रांतिवीर की कहानी अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। तो आज आप ही बताइए किसकी बारी है।
0: तारीख, आज बारी है ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा, और वो है दुर्गावती यानी दुर्गा भाभी।
1: तो फिर हम अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार न करवाएं तो अच्छा होगा।
0: जी, एक शताब्दी से थोड़ा पहले जब 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के पंडित बांके बिहारी नागर के घर एक सुकुमार कन्या का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बड़ी होकर ये बच्ची भारत में ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। इस बच्ची का नाम दुर्गावती रखा गया। 10 माह में ही इस बच्ची की मां की मृत्यु हो गई। वैराग्य से घिरे पिता ने उसके चाचा चाची के घर सौंप कर संन्यास की राह पकड़ी।
1: 1918 में आगरा निवासी शिवचरण वोहरा के पुत्र भगवती चरण वोहरा के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और वे 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जन जागृति और शिक्षा के महत्व को समझने वाली दुर्गावती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1925 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम शचिंद्र नाथ रखा गया।
0: चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी हुई और देशभक्तों के एक वर्ग ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर देश की आजादी का सपना देखा था। भारत को आजाद कराने की रणनीति में जुटे लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। इसकी पहली कार्यकारिणी सभा 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हुई।
1: इस सभा में बिस्मिल के नेतृत्व में योगेंद्र शुक्ल, योगेश चंद्र चटर्जी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग थे। बाद में अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आजाद भी इस संस्था में शामिल हो गए। काकोरी कांड के बाद यही संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पुनर्जीवित हुई, तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, उनकी बहन सुशीला दीदी और दुर्गावती भी जुड़ गई।
0: मेरठ षड्यंत्र कांड में भगवती चरण वोहरा के नाम पर वारंट निकलने पर वे अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ लाहौर चले गए, जहां वे भारतीय नौजवान सभा में शामिल हुए। 16 नवंबर 1926 को भारतीय नौजवान सभा ने शहीद करतार सिंह की 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया। दुर्गा देवी और उनकी ननद सुशीला देवी ने अपने खून से शहीद करतार सिंह का चित्र बनाया था। यहीं से दोनों क्रांतिकारी महिलाएं दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी के नाम से जानी जाने लगी। इस पार्टी के जरिए दुर्गा भाभी लगभग सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई।
1: दुर्गा भाभी के लिए सबसे यादगार दिन था 17 दिसंबर 1928 का। लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या करने के बाद सुखदेव और भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के घर पर शरण ली। भगत सिंह अंग्रेजों की तरह सूट और हैट पहने थे। दुर्गा भाभी समझ गई कि क्या हुआ है। प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा कलकत्ता गए हुए थे। दुर्गा भाभी ने भी योजना बनाई कि इन्हें भी कलकत्ता लेकर जाया जाए।
0: लाहौर से कलकत्ता जाने की योजना बनी। भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के वेश में थे। उन्होंने ट्रेन में प्रथम श्रेणी की टिकट ली और राजगुरु ने सेवक की वेशभूषा में तृतीय श्रेणी की टिकट ली। जब ये लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही भगत सिंह को खोजते हुए पहुंची थी, लेकिन दुर्गा भाभी की मदद से भगत सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ट्रेन में जा बैठे। ये सभी क्रांतिकारी ट्रेन में सवार होकर स्वाधीनता संघर्ष का एक नया इतिहास रचने जा रहे थे। इस घटना के बारे में किसी ने कहा है कि मौत से बचना आसान है, लेकिन उस शाम लाहौर स्टेशन पर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
1: यात्रा के दौरान दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण वोहरा को तार भेजकर सूचना दी कि वे उन्हें कलकत्ता स्टेशन पर लेने आ जाएं। कलकत्ता में इनकी मुलाकात अतुल गांगुली, जीएन दास और फणीन्द्र घोष जैसे क्रांतिकारियों से हुई।
0: जी।
1: वहां उन्होंने अपने संगठन की एक शाखा भी खोली। यहां पर उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता में रहकर भगत सिंह ने बांग्ला भाषा भी सीखी।
0: कलकत्ता में ही इन क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू को निकट से देखा। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा इन क्रांतिकारियों के लिए पिता और मार्गदर्शक की तरह थे और दुर्गा भाभी माँ की तरह इनका ख्याल रखती थीं और क्रांतिकारी योजना बनाने में भी इनकी मदद किया करती थीं। इन सभी क्रांतिकारियों के साथ कलकत्ता में कुछ वक्त रहकर दुर्गा भाभी लाहौर वापस आ गईं। असेंबली में बम फेंकने की योजना भी कलकत्ता में ही तैयार हुई।
1: योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंका और गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे में इन दोनों को सजा दी गई। जल्दी ही ये भी सिद्ध हो गया कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह भी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में रखा गया।
0: चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने तय किया कि भगत सिंह और उनके साथियों को किसी तरह जेल से छुड़ाया जाए। इस समय दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी भी भूमिगत थीं। भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए 1 जून 1930 को जेल पर बम फेंका जाना था। बम ठीक तरह से बने हैं या नहीं ये देखने के लिए 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा, वैशंपायन और सुखदेव बम लेकर रावी नदी के किनारे गए। बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण वोहरा के हाथों में बम फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी अकेली हो गई।

0: क्रांतिकारी दल पर दूसरा वज्रपात ये हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी क्रांतिकारी यहाँ वहाँ बिखर कर काम करने लगे थे। ये तय किया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा के विरोध में कोई बड़ा कदम उठाया जाए।
1: बंबई के गवर्नर हेली की हत्या की योजना बनाई गई। इस पूरी योजना की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी ने खुद ली। वो अपने कुछ साथियों के साथ बंबई जा पहुंची। उनके साथियों में थे सुखदेव और पृथ्वी सिंह। क्रांति के क्षेत्र में पृथ्वी सिंह अनुभवी लोगों में गिने जाते थे। अमेरिका में बनी भारतीय क्रांतिकारियों की पार्टी के संस्थापक भी पृथ्वी सिंह ही थे। भारत लौटकर पृथ्वी सिंह को अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश में फांसी की सजा हुई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई।
0: गवर्नर हेली शाम को अपने बागीचे में बैठा करते थे। योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी ने पारसी महिला के वेश में अपने मित्र शिंदे की गाड़ी में बैठकर उसके ड्राइवर बापट के साथ हेली के घर जाने का निर्णय किया। सुखदेव और पृथ्वी सिंह उनके अभिभावक के वेश में उनके साथ गए। तय ये हुआ कि दुर्गा भाभी गवर्नर हेली को बातों में उलझा कर उन पर गोली चला देंगी। बाकी लोगों ने भी विरोध किया तो सुखदेव और पृथ्वी सिंह भी गोली चला देंगी।
1: योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी पृथ्वी सिंह और सुखदेव के साथ कार में सवार होकर गवर्नर के बंगले पहुंची। गवर्नर हेली घर पर नहीं मिले। बहुत देर तलाश करने के बाद ये तीनों गवर्नर के घर के पास लैमिंगटन रोड पुलिस थाने पहुंचे। उस थाने पर ज्यादातर गोरे पुलिस अधिकारी थे। रात 1 बजे पुलिस की एक गाड़ी आई और उसमें से एक महिला और कुछ गोरे अफसर उतरे। इन तीनों क्रांतिकारियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। पृथ्वी सिंह चिल्लाकर बोले, शूट। दुर्गा भाभी ने उस महिला को छोड़कर बाकी गोरे अधिकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। पृथ्वी सिंह और सुखदेव भी गोली चलाने लगे। गोलियां चलती देख पुलिस अधिकारी थाने से बाहर आए और आक्रमणकारियों को उन्होंने घेरना चाहा। क्रांतिकारी वहां से भागे और अपने ठिकाने पहुंचे। पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी के ड्राइवर बापट को पकड़ लिया और उसे लेकर क्रांतिकारियों के ठिकाने पहुंचे। पुलिस को देखकर दुर्गा भाभी, पृथ्वी सिंह और सुखदेव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। पृथ्वी सिंह साधु के वेश में पैदल चलकर नौसारी पहुंच गए और दुर्गा भाभी अपने बच्चे को लेकर सुखदेव के साथ कानपुर चली गई। बंबई हाईकोर्ट में 10 लोगों पर लैमिंगटन शूटिंग केस चला और 4 मई 1931 को सभी निर्दोष घोषित कर दिए गए।
0: दुर्गा भाभी के जीवन में दूसरा वज्रघात हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके संरक्षक और अभिभावक चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फर्ट पार्क में ब्रिटिश अधिकारियों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद के जाने के बाद दुर्गा भाभी अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। वे इधर उधर आश्रय पाने के लिए भटक रही थीं। दुर्गा भाभी को अपने से ज्यादा चिंता अपने पुत्र शचिंद्र की थी। उसे परेशानियों से बचाने के लिए और उसकी शिक्षा के लिए वे दिल्ली में रहने लगी। इस बीच पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रहती थी।
1: दुर्गा भाभी जब लाहौर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में उन्हें 3 साल तक नजरबंद रखा गया। उसके बाद दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद चली गईं, जहां उन्होंने एक कन्या विद्यालय में नौकरी कर ली। फिर वो दिल्ली पहुंच गईं। उनकी कर्मठता, त्याग और कार्यकुशलता को देखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें चुना गया। 1940 से ही वे उत्तर भारत में पहले मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना के लिए कोशिश कर रही थीं। आजादी के बाद दुर्गा भाभी ने लखनऊ को अपना स्थायी निवास बनाया। 7 फरवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मॉन्टेसरी सोसाइटी की नींव रखी और दुर्गा भाभी को उसके प्रबंधन का काम सौंपा।
0: 1983 तक दुर्गा भाभी इस संस्था के प्रबंध समिति में रही, फिर लखनऊ छोड़कर वे गाजियाबाद आ गई। लखनऊ छोड़ते समय उन्होंने अपना निवास संस्था को दान कर दिया। आजादी के बाद उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 51,000 की राशि भेंट की गई, लेकिन दुर्गा भाभी ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इन पैसों से एक शहीद स्मारक बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भारत के इतिहास और देश की गौरवशाली परंपरा को जानने का मौका मिल सके।
1: 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की आयु में दुर्गा भाभी का गाजियाबाद में निधन हो गया। दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त ने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त और समाज सेविका को हमेशा हमेशा बहुत श्रद्धा के साथ में याद किया जाएगा।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र। कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

इस आयोजन के पहले दिन दो प्रस्तुतियां हुई। पहली प्रस्तुति रही स्वाति तिवारी के गायन की और दूसरी प्रस्तुति रही अश्विनी भिड़े देश पांडे के गायन की। आइए सुनते हैं स्वाति तिवारी का गायन।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का ऐसा गुच्छा जिसकी हर पंखुड़ी में इतिहास की धड़कन बसती है, जहां शब्द दीपक बनकर जलते हैं और भावनाएं गंगा जल सी मन को पवित्र करती चली जाती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
2: श्रोताओं, पिछले अंक में आपने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ सुना, जहां कर्ण की साधना उस दीपक की तरह दिखाई दी जो आंधियों के बीच भी अपनी लौ बचाए रखता है। महेंद्र पर्वत की नीरवता में बैठा वह सूर्य पुत्र अपने भाग्य से नहीं, स्वयं से युद्ध कर रहा था। गुरु परशुराम के चरणों में बैठकर वह केवल अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा रहा था, वह अपने जीवन की टूटी हुई तकदीर को नए पुरुषार्थ से गढ़ने में लगा था। किंतु श्रोताओं, कहा भी तो गया है कि सत्य की डोरी चाहे जितनी लंबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति ने भी वहीं अपना दांव चला। विषधर का दंश सहकर भी कर्ण की पलकों का न हिलना उस अग्नि का प्रमाण बन गया जो साधारण मनुष्य में नहीं जलती, और उसी क्षण गुरु परशुराम के सामने वह रहस्य खुल पड़ा जिसे कर्ण अपने प्राणों की तरह छिपाए फिर रहा था।
1: श्रोताओं, विश्वास जब टूटता है तो उसकी प्रतिध्वनि पत्थरों में नहीं, हृदय में सुनाई देती है। परशुराम के भीतर भी यही तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका अटल व्रत, दूसरी ओर पुत्रव्रत प्रिय शिष्य के प्रति उमड़ता वात्सल्य, मानो धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हों और दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हों। और कर्ण वो अपराधी की तरह नहीं, तपस्वी की भांति खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ये पीड़ा है कि जिसने उसे अपने हृदय का स्थान दिया उसी के विश्वास को वो अनजाने में छल बैठा। यही कारण है कि ये प्रसंग केवल शाप की कथा नहीं बनता, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस महासंग्राम का स्वरूप ले लेता है, जहां प्रेम और प्रतिज्ञा दोनों अपनी अपनी कीमत मांगते हैं।
2: श्रोताओं, समय का रथ अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शब्द अंगार बनेंगे, आंखें अश्रु से भरेंगी और नियति अपना कठोर निर्णय सुनाएगी। गुरु का क्रोध वज्र की तरह गिरेगा, किंतु उसके भीतर स्नेह की धधकती राख भी दिखाई देगी। और कर्ण, वह टूटकर भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर का स्वाभिमान हिमालय की चोटी की तरह अडिग है। तो आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 11, 12 और 13 की ओर, जहां करुणा महाकाव्य बनती है, वियोग इतिहास रचता है और गुरु शिष्य का ये संबंध मानवता की सबसे उज्जवल गाथाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दूसरे सर्ग के भाग 11 का काव्य पाठ और चर्चा।
1: तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं, लेकिन कहां उतारूं मैं।
2: इस पद पर बोला कर्ण,
3: दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी, पर साई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा।
2: परशुराम ने कहा,
1: कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा।
2: परशुराम आहत हैं। उन्हें छल से अधिक उस विश्वास के टूटने की पीड़ा है जिसे उन्होंने पुत्रवत संजोया था। और कर्ण अपराधी सा नहीं तपस्वी सा खड़ा है, दंड को दया समझकर स्वीकारने को तत्पर। श्रोताओं, वे बड़े खरे लोग थे जो अपने धर्म से तनिक भी डिगते नहीं थे, प्रेम को अपने स्वार्थ सिद्धि की ढाल नहीं बनाते थे। आज हम सभी इन मानव मूल्यों और नैतिक बल से कितनी दूर निकल चुके हैं। यही श्राप की त्रासदी है जब स्नेह को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है।
1: श्रोताओं, कर्ण पर शाप का वज्र गिरा, पर उसके साथ आशीर्वाद की धूप भी झर पड़ी। कर्ण व्याकुल है, उसे जीवन नहीं साधना के निष्फल हो जाने का दुख साल रहा है। और परशुराम, वे भी पत्थर नहीं है। व्रत की मर्यादा उन्हें कठोर बनाती है, पर भीतर का स्नेह बार बार आंखों तक आ जाता है। वे शस्त्र का तेज हरते हैं, पर कर्ण के पौरुष पर विश्वास भी जताते हैं। दंड देते हैं, पर भविष्य की कीर्ति का वरदान भी। यहीं भाग 12 की भूमि तैयार होती है, जहां शाप केवल क्षति नहीं चरित्र की अग्नि परीक्षा बन जाता है। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, पर दोनों के हृदय भीग रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 12 का काव्य पाठ।
2: कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे,
4: हाय हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
2: परशुराम ने कहा,
1: कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो।
2: यह आत्मसंयम की चरम स्थिति है। गुरु स्वयं को कठोर बना रहे हैं ताकि उनका व्रत न टूटे। यह विछोह करुण और उदात्त दोनों है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूल गुरुह कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करना ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु चरणों की पूजा करना ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु का वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। श्रोताओं, अब यदि हम इस श्लोक की भावना को परशुराम और कर्ण के प्रसंग से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि परशुराम के भीतर केवल क्रोध नहीं था, वहां गुरु का वही विराट स्वरूप उपस्थित था। उन्होंने श्राप दिया क्योंकि व्रत और धर्म उनके लिए सर्वोपरि थे, किंतु कर्ण के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज हर लिया पर उसकी कीर्ति का वरदान भी दिया। यह द्वंद नहीं गुरु हृदय की व्यापकता है। कर्ण एकलव्य से कम नहीं था गुरु भक्ति में। श्रोताओं, कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका कवच कुंडल नहीं, उसकी गुरु भक्ति है। जब सत्य उजागर हुआ, जब श्राप मिला, तब भी उसने दृष्टि उठाकर प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वह गुरु चरणों में झुक गया। जिसने उसे दंड दिया उसी के प्रति उसका सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ। यही तो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, जहां अहम नहीं केवल समर्पण बोलता है। यही गुरु भक्ति कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने गुरु का मान रखे वही सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है।
1: आज के समय में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक पात्र और कुपात्र का विवेक खो बैठते हैं। कहीं स्वार्थ, कहीं पक्षपात, कहीं निजी लाभ शिक्षा के पवित्र संबंध को कलुषित कर देते हैं। गुरु का स्थान तभी ऊंचा है जब वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और शिष्य के उत्थान को अपने अहम से ऊपर रखे। परशुराम का यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि गुरु का धर्म कठोर हो सकता है पर उसका हृदय करुणामय होना चाहिए। जहां व्रत और प्रेम साथ चलें, वहीं सच्चा शिक्षण जन्म लेता है।
2: श्रोताओं, यहीं से द्वितीय सर्ग के अंतिम चरण की महाकाव्यात्मक भूमिका प्रकट होती है। श्राप और आशीष, त्याग और करुणा दोनों मिलकर इस क्षण को दिव्य वियोग में रूपांतरित कर देते हैं। गुरु शिष्य को दूर भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेम का परम रूप विरह ही होता है। आइए अब बढ़ें उस अंतिम प्रसंग की ओर, जहां काल का रथ अविराम है और चलना ही नियति। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, भाग 13, जहां करुणा महाकाव्य बनती है और वियोग इतिहास रचता है। परशुराम कहते हैं,
1: हाँ, बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जाए, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए।
2: इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरे श्रृंगार से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। यह गुरु का आंतरिक द्वंद है, धर्म और स्नेह का संघर्ष। बाहर कठोरता, भीतर करुणा की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह मौन विदाई है, शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल अश्रु संवाद कर रहे हैं। यह केवल गुरु शिष्य का वियोग नहीं, यह धर्म और प्रेम के बीच की मौन अग्नि परीक्षा है। परशुराम की बुद्धि अडिग है, पर हृदय भीग चुका है। कर्ण की साधना टूट गई, किंतु उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चरण धूल लेकर चला है, मानो अपने जीवन की शेष ज्योति उसी भक्ति से प्रज्वलित करने लगा हो।
1: श्रोताओं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग को केवल करुण घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे मनुष्य के भीतर चलने वाले सनातन संघर्ष, कर्तव्य और करुणा, व्रत और वात्सल्य, न्याय और प्रेम का महाभाव बना दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग काल की सीमाओं से परे आज भी उतना ही स्पंदित है जितना तब था, क्योंकि मनुष्य का हृदय आज भी उसी द्वंद्व से गुजरता है। श्रोताओं, इसी करुण दीप्त क्षण के साथ द्वितीय सर्ग को प्रणाम। काव्य गुंजन के आगामी अंक में हम इस महाकाव्य यात्रा के अगले चरण की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नियति का रथ और भी वेग से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: और मैं संदीप शर्मा,
5: और मैं दीपक नेमा।
2: श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।